सुप्रभात, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 23, तदनुसार 13 मई सन 2026 सुबह के 5:58 और 36 सेकेंड हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में। अब हमारा आज का ये प्रसारण आरंभ होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।
3: एक प्रतिष्ठित कार्यालय की प्रोन्नति समिति के सदस्य अपनी कई बैठकों के बाद भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। विषय उसी कार्यालय के चार योग्य कर्मठ कुशल प्रशासकों में से किसी एक को ही प्रोन्नति देने का था। अंत में उस समिति के सदस्यों ने इस विषय को कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के पास इस निर्णय के साथ भेज दिया। हम लोगों के विचार से किसी एक को ही प्रोन्नत करना शेष तीनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोग सर्वसम्मति से ये निर्णय करते हैं कि इनमें से किसी एक व्यक्ति की प्रोन्नति का फैसला आप ही करें। इसके बाद उन अधिकारियों के मासिक वेतन के भुगतान के पूर्व सर्वोच्च अधिकारी ने वेतन भुगतान कर्मचारी को बुलाकर कुछ अत्यंत गोपनीय आदेश दिए। यथासमय चारों अधिकारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया। वेतन भुगतान के बाद ठीक दूसरे दिन उन चारों में से एक अधिकारी आकर वेतन भुगतान करने वाले कर्मचारी को ये कहकर कुछ रुपये लौटा गया कि मेरे वेतन लिफाफे में गलती से ये रुपये वेतन के रूप में अधिक थे, कृपया इसे वापस ले लें। इसके कुछ दिनों के बाद इन चारों में से एक व्यक्ति की प्रोन्नति की सूचना कार्यालय में प्रचारित कर दी गई। शेष तीनों सर्वोच्च अधिकारी के पास पहुंच गए कि उनकी प्रोन्नति क्यों नहीं की गई। प्रोन्नति देने का कारण स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च अधिकारी ने कहा, आप तीनों भी योग्य हैं किंतु ईमानदार नहीं है। ईमानदारी के अभाव में आपके सारे गुण अधूरे हैं। आपके वेतन के लिफाफे में वेतन के रुपये से अधिक रुपये थे किंतु आपने इसकी चर्चा तक नहीं की। आप में से जो ईमानदार है उसी की प्रोन्नति हुई है। तीनों लज्जित होकर लौट आए। ये घटना कहने सुनने में छोटी लग सकती है किंतु इसमें ईमानदारी का सामर्थ्य स्पष्ट हो जाता है। हम में अनेक कमजोरियां हैं किंतु यदि हम में ईमानदारी है तो उसकी चमक में ये सारी कमजोरियां और त्रुटियां छिप जाती हैं। लोग प्रायः कह देते हैं कि दुनिया का व्यवहार ईमानदार बने रहने से नहीं चल सकता। व्यवहार में तो ईमानदारी घाटे का सौदा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि व्यापार में साख उसी व्यापारी की बनी रहती है जो ईमानदार होता है। ऐसा व्यापारी अपनी चीजों के क्रय मूल्य का चिट्ठा अपने उपभोक्ताओं को निसंकोच दिखाकर उसमें ईमानदारी से अपना उचित मुनाफा जोड़कर उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है और तब उसकी दुकान से वस्तु को खरीदने में किसी उपभोक्ता को कोई आपत्ति नहीं होती। बेईमान व्यापारी कुछ दिनों तक ही अपने खरीदारों को ठग सकता है, पर उसकी पोल खुलती ही है और तब चार दिनों की चांदनी अंतहीन अंधेरी रात बनकर सामने आती है। अपने अपने पेशों के प्रति ईमानदारी बनी रहे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्या वो डॉक्टर ईमानदार है जो अपने रोगी को उसके रोग की सही जानकारी नहीं देकर केवल उसे अपनी आमदनी का अच्छा जरिया समझता है? क्या आप उस योग्य शिक्षक को ईमानदार मानेंगे जो कक्षा में अपना विषय केवल इसलिए अच्छी तरह नहीं समझाता कि इसके कारण विद्यार्थी अलग से उससे ट्यूशन नहीं पढ़ सकेंगे? उस कुशल प्रशासक में भी ईमानदारी का अभाव है जो बड़ी चालाकी से जांच के फंदे से अपने को बचाते हुए काम उन्हीं का मुश्तैदी से पूरा करता है जिनसे उसे बड़ी रकम हाथ लगती है। कार्यालय में काम करने वाले वे सभी व्यक्ति ईमानदारी से हट जाते हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने नियत स्थान से हट हट कर इधर उधर घूमने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं, और उस नेता में भी ईमानदारी के दर्शन नहीं होते जो लोक लुभावने वायदे तो करता है पर उसे पूरा करने की सोचता तक नहीं। यदि कोई हमें बेईमान कह देता है तो इसे हम सहज ही नहीं झेल पाते, सुनकर तिलमिला जाते हैं, इसे सबसे बड़ी गाली मानते हैं, और है भी ये सबसे बड़ी गाली। पर ये गाली नहीं सुननी पड़े या ये गाली किसी प्रकार हम पर सही ना उतरे, इसके लिए हमें ईमानदारी को अपने चरित्र का स्वाभाविक गुण बनाना ही होगा। ईमानदार व्यक्ति का लोहा उसके दुश्मन भी मानने को बाध्य हो जाया करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कूटनीतिक चालें राष्ट्रपिता गांधी की ईमानदारी का सामना करते ही प्रभावहीन हो जाया करती थी। गांधी जी के सत्य अहिंसा को उनकी ईमानदारी ही अमोघ अस्त्र बना देती थी। अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए हमें अपने क्षुद्र स्वार्थों, तात्कालिक लाभों और बड़े से बड़े प्रलोभनों को सहर्ष छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी नष्ट हो जाने पर सभी प्रकार के लाभ कौड़ी के तीन हो जाते हैं। ईमानदारी वो जल भरी नदी है जिसमें हमारे गुणों की नाव सहज भाव से चल सकती है। ये ना रहे तो हमारे गुणों का जीवन में अग्रसर होना कठिन हो जाता है।

श्रोता सुन रहे थे आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। 6:11 और 33 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संजय गिरियर साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

श्रोताओं के बीच सक्सेना और साथियों के गए इसी भक्ति रचना के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त होता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना श्रोता सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 और 30 सेकेंड होने को हैं। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी, बस कुछ ही पलों में।

भगवान शिव पार्वती को काकभुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काकभुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं लीजिए पेश है आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 7 बजे आप सुन सकते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग विज्ञान वार्ता। ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर। 7:30 पर सुनिए गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार सुना जा सकता है 8:30 पर, रिले होगा हमारे रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा का कार्यक्रम 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, रिले करेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे सुनिए हमारे स्थानीय कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से संध्या 4:30 पर सुना जा सकता है विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। इस दौरान 1:10 पर और 2:55 पर एवं संध्या 4 बजे प्रादेशिक समाचार रिले किया जाएगा हमारे रांची केंद्र से।

संध्या 5:02 पर सुनिए इवनिंग मेलोडी। 5:30 पर होगा कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6:02 पर युवाओं

कुसंबुद्ध कार्यक्रम युवाणी 6:30 पर हुआ कार्यक्रम फिल्म संगीत, 7 बजे प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से, 7:15 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, 7:30 पर होगा कानून और समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कार्यक्रम कानूनी सलाह, ऑल टाइम हिट सदाबहार फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम 7:45 पर होगा, 8 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी चाहत, 8:45 पर समाचार संध्या रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, न्यूज 8:09। श्रोताओं एक बार फिर से सुन लीजिए, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे होगा न्यूज 8:09 रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, 9:15 पर होगा दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट, 9:30 से 10 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 10 बजे का कार्यक्रम फिल्म संगीत का रजनीकंधा, 10:30 पर एक फिल्म से और 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचारों के साथ होगा हमारे आज के प्रसारण का समापन। तो श्रोताओं ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर, 6:55 होने को है, अब संस्कृत में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7 बज चुके हैं और ये वक्त है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज के इस कार्यक्रम में हैं कुछ नागपुरी लोकगीत के साथ साथ भोजपुरी लोकगीतों का भी आनंद उठा सकते हैं। आइए सुनते हैं पहले कुछ नागपुरी लोकगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

श्रोतो साथियों, शारदा सिन्हा के गाये इसी भोजपुरी रचना के साथ अब आज का लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग समाप्त होता है।

श्रोता सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 7:20 होने को है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान वार्ता। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित वार्ता 3 पेरेंट बेबी। वार्ताकार हैं रीसा राठौर। आइए सुनते हैं।

थ्री पेरेंट बेबी अर्थात वह संतान जिसमें आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए का अधिकांश भाग उसके मौलिक माता पिता का होता है, जबकि कुछ भाग किसी अन्य महिला से प्राप्त होता है। साधारण शब्दों में एक ऐसी संतान की उत्पत्ति जिसमें एक पिता तथा दो माताओं की भूमिका होती है। दुनिया के पहले थ्री पेरेंट बेबी यानी तीन अभिभावकों के संतान के जन्म की आईवीएफ टेक्निक सार्वजनिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक से एक स्वस्थ बच्चे के जन्म देने में सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चे के जन्म में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एमआरटी की प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया की गंभीर खामी के कारण होने वाली लीफ सिंड्रोम से बच्चे को बचाया जा सका। आइए जानते हैं क्या है यह नई तकनीक। नई तकनीक में मां के अंडाणु के एक न्यूक्लियर जीनोम को अन्य महिला के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाले अंडाणु के जीनोम से बदल दिया गया। इसके बाद अंडे का निषेचन कर उसे मां के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इस तरह से बच्चे का जन्म दो मां और एक पिता से हुआ। इस तकनीक की सफलता में भविष्य में आनुवांशिक रूप से होने वाली जन्मजात बीमारियों से बच्चे को बचाना संभव हो सकता है। कोशिका एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका जीवन की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। जीवन की सभी उपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती है। कोशिका विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है, जिनमें कुछ प्रमुख कोशिकांग के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, गोल्जी काय, अंतर्द्रवी जालिका आदि है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिस कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसी कोशिका में उपस्थित केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पूरे डीएनए का करीब 0.0005% डीएनए मौजूद होता है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। प्रजनन के दौरान होने वाली निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जब अंड कोशिका यानी एग सेल एवं शुक्राणु यानी स्पर्म सेल मिलते हैं, तो शुक्राणु से केवल केंद्रक अंड कोशिका में प्रवेश करके भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो भ्रूण कोशिका है उसमें केंद्रक के अलावा समस्त कोशिकांग अंडकोश के ही होते हैं। इस प्रकार किसी भी जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ उसे उसके माता पिता दोनों से, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए उसके विशुद्ध रूप से उसकी माँ से प्राप्त होता है। अब यदि किसी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया में विकार हो तो वह विकार उसकी संतान में जाकर कई गंभीर आनुवांशिक रोग उत्पन्न करते हैं तथा ऐसे नवजात के बचपन में ही मृत्यु हो सकती है। इन रोगों में तंत्रिका संबंधी बीमारियां, छोटा कद, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी बीमारी आदि भी शामिल है। इन्हीं विकारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए थ्री पेरेंट बेबी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्य प्रणाली। उपरोक्त आधारभूत समझ के बाद इस तकनीक की कार्य प्रणाली को समझते हैं। इस प्रक्रिया में मूल महिला जिसका माइटोकॉन्ड्रिया विकार युक्त है कि अंड कोशिका से केंद्रक के किसी अन्य दाता यानी डोनर महिला जिसका माइटोकॉन्ड्रिया विकार रहित है कि केंद्रक रहित अंड कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। प्राप्त अंड कोशिका में केंद्रक मूल महिला का जबकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य कोशिकांग दूसरी स्वस्थ महिला के होते हैं। इसके पश्चात इस कोशिका का निषेचन मूल रूप से प्राप्त शुक्राणुओं से कराया जाता है एवं प्राप्त भ्रूण को मूल महिला के गर्भाशय में प्रस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संतान की कोशिका के केंद्रक का आनुवांशिक पदार्थ उसे उनके मौलिक माता पिता से मिला है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए उसे अन्य स्वस्थ दाता महिला से प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि उत्पन्न संतान को थ्री पेरेंट बेबी कहा जाता है। विशेषताएं एवं सावधानियां। इस प्रक्रिया द्वारा विकार युक्त माइटोकॉन्ड्रिया से उत्पन्न आनुवांशिक रोगों जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ली सिंड्रोम आदि का उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है एवं इस तरह के विकारों को दूसरी पीढ़ी में जाने से रोका जा सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया
पूर्णतः प्राकृतिक नहीं है तथा मानवीय हस्तक्षेप से युक्त है, अतः इस बात की भी संभावना रहती है कि उत्पन्न संतान में भविष्य में कई अन्य आनुवांशिक परिवर्तनों के चलते नए रोग उत्पन्न हो जाए। इसलिए इस तकनीक से उत्पन्न संतान को हमेशा चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। थ्री पेरेंट बेबी तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल बच्चे में माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जेनेटिक विशेषताएं आती है, लेकिन अगर इस डीएनए में किसी तरह की खामी है तो बच्चा कई आनुवांशिक बीमारियों के साथ जन्म लेता है। इनमें कई तरह की बीमारियों को तो अब इलाज भी नहीं है। बच्चे को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए यह कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसमें दूसरी महिला से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेकर उसे माँ के एग सेल्स यानी अंड कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है और फिर पुरुष के स्पर्म के एग के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इस तरह से जो बच्चा होता है वह आनुवांशिक बीमारियों से मुक्त होता है। मेक्सिको में दुनिया के ऐसे पहले बच्चे ने जन्म लिया है जिसके तीन पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकली दो माँ और एक पिता। इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस तकनीक में एम्ब्रियो में तीन पेरेंट्स के डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक से जेनेटिक बीमारी रोकी जा सकती है। एक्सपर्ट्स इसे हेल्थ सेक्टर में एक नए युग का आगाज मान रहे हैं। उनका मानना है कि इससे जेनेटिक बीमारियों को बच्चों में जाने से रोका जा सकता है। तीन लोगों को डीएनए से बच्चे पैदा करने की शुरुआत 1990 के दशक में

हो गई थी, लेकिन इस बार जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह पूरी तरह अलग है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन की इस टेक्निक की कानूनी रूप से कड़ी जांच की जरूरत है। इसमें यह भी सोचा जा रहा है कि बच्चा बड़ा होकर अपने तीन पेरेंट्स होने की बात को किस तरह से लेगा। थ्री पेरेंट बेबी का पहला कानून। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर को सबसे पहली बार 2015 में यूके में कानूनी रूप से वैध बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक किसी भी देश ने इस तकनीक का इजाजत देने के लिए कानून नहीं बनाया है। यूके फर्टिलिटी क्लिनिक के नियामक ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तकनीक के सतर्क उपयोग की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। यह तकनीक बच्चे को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए दूसरी महिला डोनर से स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डिंब के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को बदल देता है। इस तकनीक का उद्देश्य उन माता पिता की मदद करना है जिनमें अपने बच्चों को कमजोर और यहाँ तक कि घातक आनुवांशिक रोगों को देने का जोखिम अधिक है। गंभीर नीतिक और चिकित्सीय चिंताओं के बावजूद और ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी द्वारा प्रक्रिया को अनुमति किए जाने के बाद भी थ्री पेरेंट बेबी को कानूनन जायज बनाने वाला यूके पहला देश बन गया है। एचएफईए द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के पैनल द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर अपनी चौथी समीक्षा प्रकाशित करने के दो सप्ताह बाद यह फैसला किया गया। पैनल का यह मत भी था कि इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ विशेष मामलों में जहां माताओं का अपने बच्चों में माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी वहन करने का जोखिम है और इसे रोकने के लिए की जाने वाली वैकल्पिक चिकित्सा बहुत कम या बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, उसके लिए भी किया जा सकता है।

श्रोताओं, रीसा राठौर से अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था थ्री पेरेंट्स बेबी। इसी के साथ अब आज का विज्ञान वार्ता का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ज पर। 7:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम, गीत संगीत बस कुछ ही पलों में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: घर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गैर फिल्मी रचना, और उसके पहले अदनान समी के स्वर में हमने आपको सुनवाई गैर फिल्मी रचना। गैर फिल्मी एल्बम के गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

श्रोताओं को बाबुली साहब के गए इसी गैर फिल्मी रचना के साथ अब आज का गीत संगीत का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। अनुमति दीजिए अशोक को, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्ते।

श्रोता सुन रहे थे गैर फिल्मी एल्बम के गीतों के कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से होगा और उसके बाद 8:30 और प्रादेशिक समाचार लेकर करेंगे हमारे रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने

0: दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को एआईएडीएमके विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से

0: normal life across the region. According to the Met Department, similar weather conditions are likely to continue for the next 2 to 3 days. With Jitendra Divedi's report from Jaipur, Jigyasa Pandey, Akashwani News.
1: Over to sports. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder scalped 3 wickets. Kagiso Rabada was declared player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Anuja. The dailies today have all taken note of the NEET UG 2026 being cancelled on allegations of question paper leak affecting lakhs of medical aspirants across the country. NEET mess. NTA orders retest as CBI probes leak, writes Hindustan Times. The paper adds, what began as a social media claim has now snowballed into a massive examination scandal. Quoting the Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, the Hindu hints at fuel price hike as oil marketing companies mounting losses cause concern. PM cuts convoy, government departments to adopt austerity measures, reports the Times of India. Under the headline, in a shifting world order, 5 principles should guide India's diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, in foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times noting the war impact on growth and current accounts cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से 2018 में लापता बच्ची के मामले में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने मामले की धीमी जांच पर कड़ी नाराजगी जताते हुए वर्ष 2018 से अब तक जिला में तैनात रहे सभी 6 एसपी और 6 जांच अधिकारियों को 9 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस बच्ची को ढूंढने में विफल रहती है तो जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। रांची के आईआईसीएम में विज्ञान भारती द्वारा आयोजित सतत खनन और पारिस्थितिकी बहाली पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हो गई। समापन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए झारखंड को कोल इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी की ओर ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक किफायत बरतने की अपील का गिरिडीह में व्यापक स्वागत हुआ है। स्थानीय महिलाओं, डॉक्टरों और महिला उद्यमियों ने देश हित में अपनी विदेश यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं लोगों ने सोना न खरीदने, खाद्य तेल और डीजल पेट्रोल की खपत कम करने का संकल्प लिया है।
4: मोदी सरकार ने अपील किया है कि हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, और अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं वहां से काफ़ी डिस्टेंस है हमारा, 2 किलोमीटर। पहले स्कूटी से आती थी बट अभी मैं वॉक करके ही आती हूं, तो इससे मेरा सेहत में भी इफेक्ट पड़ा है। एंड मैं आम लोगों से भी अपील करूंगी कि वो भी पेट्रोल एंड डीजल का कम से कम उपयोग करें।
3: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र भेजकर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्र में 9 प्रमुख मांगे रखी हैं, जिसमें प्रधानमंत्री से 1 वर्ष तक विदेशी यात्राएं, चुनावी रैलियां और रोड शो स्थगित करने तथा कॉरपोरेट कर्ज माफी पर रोक लगाने की अपील की गई है।
5: उनसे हम भी कहना चाहते हैं, आप अपनी विदेश यात्राएं 1 वर्ष तक स्थगित रखें, आप अपना रोड शो तथा भाजपा की रैलियों को 1 वर्ष तक आप स्थगित रखें, मित्रों का ऋण माफ करना बंद कीजिए, आप अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों तथा 22 भाजपा शासित राज्यों के

0: हित में कहा, आज इस प्रकार से संकट है वैसी घड़ी में उन्होंने कहा है कि बेवजह आप गाड़ी लेके इधर उधर मत घूमिए, सोना मत खरीदिए। 2013 में कैसे उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा था कि सोना मत खरीदिए।
1: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज दोपहर बाद धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बैलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के डीआईजी अंजनी कुमार झा ने हजारीबाग एसपी कार्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और गुमशुदगी के लंबित मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई करने और गुंडा पंजी में नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा और पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताते हुए सूबे की बदतर कानून व्यवस्था के लिए सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया।
2: लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में बद से बदतर और इस स्थिति तक लाने के लिए राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। तो जहां इस प्रकार की करप्ट ऑफिसर को सीनियर पोस्ट पर सरकार बैठा के रखे तो अच्छे अफसरों को तो मनोबल गिरेगा, अगर जिला में पदस्थापित करेंगे तो लूट तो मचेगी।
1: सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने गढ़वा स्थित पूर्व नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हालचाल जाना और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जहां सीआरपीएफ है वहां विजय निश्चित है।
3: तो जहाँ जहाँ हमारी फोर्स तैनात है वहाँ जाके फोर्स को देखते हैं किस तरह से कार्य कर रही है और क्या उनको दिक्कतें कुछ तो नहीं है। हमारे जवान पूरी तरह से हौसले में है, किसी भी तरह की कमी नहीं है। आप देखिए जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है।
1: राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में छात्राओं के साथ लोकप्रिय नागपुरी फिल्म सेरिंग देखी। फिल्म देखने के बाद मंत्री ने स्थानीय कला संस्कृति को बड़े पर्दे पर जीवंत करने के लिए कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
4: पॉलिसी में भी सरकार काम कर रही है ऐसे कलाकारों को और आगे बढ़ावा देने के लिए, और हमारे झारखंड में कलाकारों में छुपी हुई बहुत हुनर है और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो नए स्टाइल में नए आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूवी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से एक बहुत वृहद मार्केट है ऐसे मूवीज के लिए भी।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले कल राज्य में आए भीषण चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। रांची में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी से कई इलाकों में पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए, जिससे आधा दर्जन टोटो क्षतिग्रस्त हो गए। हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर में झमाझम बारिश हुई, जबकि खूंटी में ओलावृष्टि और रामगढ़ व हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत हो गई। झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी डेविड मुंडा का चयन भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में हुआ है। वे 16 और 17 मई को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर पुरुष रग्बी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह बनाकर उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नीट परीक्षा रद्द होने

की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है नीट रद्द, 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़। प्रभात खबर की सुर्खी है अदिति का पता नहीं, नाले की झाड़ियों में मिला मांस, होगी फॉरेंसिक जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं PVUNL की दूसरी यूनिट से उत्पादन शुरू। दैनिक जागरण के अनुसार जिस लापता बच्ची का शव समझ पोस्टमार्टम को भेजा, निकली पशु की हड्डी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला से लापता बच्ची मामले में लापरवाही पर जताई नाराजगी। वर्ष 2018 से अब तक तैनात रहे सभी 6 एसपी और जांच अधिकारियों को 9 जून को किया तलब। रांची में सतत खनन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए ग्रीन एनर्जी पर दिया जोर। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का आज धनबाद दौरा। बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आंधी और वज्रपात से भारी तबाही। रामगढ़ और हजारीबाग में वज्रपात से 31 मवेशियों की मौत। 15 मई को 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड के डेविड मुंडा का भारतीय सीनियर पुरुष रग्बी टीम में चयन। उज्बेकिस्तान में होने वाली सेंट्रल एंड साउथ एशिया चैंपियनशिप में देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, 8:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का लता मंगेशकर के गाए इस खूबसूरत तराने के साथ, फिल्म मेरी हम तो मेरे दोस्त से हमने लिया है इस गीत को।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। कार्यक्रम मेरे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की हजारीबाग।

0: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम होंगे हमारे मुंबई केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए सफर को जारी करते हुए आगे चलकर आपको सुनवाते हैं ये गीत परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर का गाया गीत है, आदित्य रिखारी ने साथ दिया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सचिन जिगर का ही संगीत है।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश से पहले आपने गीत सुना परम सुंदरी फिल्म से सचिन जिगर की आवाजों में। लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं तनु वेट्स मनु रिटर्न्स फिल्म से स्वाति शर्मा ब्रिजेश सांडल्य की आवाजों में ये अगला गीत, जिसे लिखा है वायु ने और धुन बनाई है तनिष्क साथी वायु ने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जावेद अली का गाया गीत सुनिए। इस गीत के गीतकार हैं रकीब आलम, देवीश्री प्रसाद का संगीत है, फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज।

0: पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना जावेद अली की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जुबीन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में अगला गीत सुनिए फिल्म लव यापा से।

लव्यापा फिल्म से ये गीत आपने सुना, जुबिन नौटियाल और जहरा एस खान की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत था। इस गीत की धुन बनाई थी तनिष्क बागची ने। गब्बर इज बैक, इस फिल्म से सुनिए अगला गीत। देवनेगी परुमा दास गुप्ता की आवाज।

0: आंखों पे बैठ जा तू आके, चाहे मेरी नींद ले जा चुरा के।
1: कुमार का लिखा गीत था, चितरंजन भट्ट का संगीत। गब्बर इज बैक फिल्म से देव नेगी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में ये गीत आपने सुना।

सत्यमेव जयते टू फिल्म से जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में। नासिर काजमी और मनोज मुंतशिर का लिखा गीत, रोचक कोहली, नुसरत फतेह अली खान का संगीत, बत किया ये गीत।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी अपने गीत सुना सत्यमेव जयते टू फिल्म से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में इरशाद कामिल का लिखा गीत प्रीतम के संगीत से सजा फिल्म कॉकटेल से।

फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मैं आपसे आज के फनकार कार्यक्रम में मिला और ये बिछड़ने की बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल जो हैं आज के फनकार, उनकी आवाज के जरिए कोई ना कोई बात तो आप तक पहुँचानी है सरकार।

जी हाँ, हर किसी को जिंदगी में प्यार नहीं मिलता। शायर ने कहा भी तो है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं शेरो शायरी करने आया हूँ या आज के फनकार कार्यक्रम में कौन से कलाकार की बातें करने वाला हूँ, ये आपको बताने आया हूँ। तो पहले जरा ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों बाद इस फनकार की बातें हो रही हैं। इनकी आवाज जाने माने पार्श्व गायक मुकेश से मिलती जुलती थी, इसका इनके करियर पर भी काफी असर पड़ा। मुकेश ने इनको काफी आगे भी बढ़ाया और आगे चलकर इन्होंने अपना एक पक्का और मुकम्मल रास्ता तय किया।

दोस्तों, मनहर उदास जाने माने गजल गायक पंकज उदास के बड़े भाई हैं। दरअसल एक ही परिवार के तीनों भाई गायक बने। सबसे पहले मुंबई आए मनहर उदास, उसके बाद आए पंकज उदास और फिर निर्मल उदास। लेकिन घर में गाने की परंपरा शुरू से थी नहीं। दरअसल मनहर उदास रेडियो पर गाने सुनते थे और साथ साथ गुनगुनाते थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम तब तक नहीं ली थी जब तक कि उन्हें फिल्मी दुनिया में अपना पहला गाना गाने का मौका नहीं मिला था। अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि मनहर आखिर मुंबई आ कैसे गए। दरअसल मनहर पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की, बचपन से ही गाने का शौक था। उनके एक रिश्तेदार एक फिल्म बना रहे थे, उसमें एक गाना गवाने के लिए उन्होंने मनहर को मुंबई बुलाया। मुंबई में मनहर ने एक नौकरी कर ली और बचे हुए समय में वो संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास बैठा करते, उनके स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग देखा करते और सीखा करते। ऐसे ही एक समय ऐसा आया जब उन्हें फिल्म विश्वास का ये गाना मिला।

इस कहानी के बाद भी मनहर उदास का सफर आसान नहीं रहा। ये वो दौर था जब मुकेश फिल्म संसार में मौजूद थे। मुकेश के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे बड़े और दिग्गज गायकों के बीच एक युवा गायक को इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। उन्हीं दिनों में मनहर उदास अलग अलग जगह पर जाकर गाने गाते, शोज करते, संगीतकारों से मिला करते और अपने गाने सुनवाकर नए गानों की तलाश में रहते। एक बार मनहर उदास को लता मंगेशकर की ओर से एक संदेश आया कि वो उनके साथ एक शो में गाएं। मनहर ने लता जी के साथ एक लाइव शो में श्रोताओं के सामने गाया और उसके बाद फिल्म अभिमान का एक गाना उन्हें मिला। लता जी ने एसडी बर्मन से आग्रह किया कि उन दिनों बन रही फिल्म अभिमान में मनहर से कोई गीत गवाया जाए। सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे।

शुरुआत में मनहर पर ये इल्जाम लगे कि उनकी आवाज मुकेश से मिलती जुलती है, लेकिन आगे चलकर उनकी आवाज एकदम बदल गई। उन्होंने मुकेश से एकदम अलग रास्ता तय किया।

संगीत के संसार को मनहर ने फिल्मी गीत ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भक्ति गीत भी बहुत सारे गाए हैं और भक्ति गीतों के मामले में उनकी ख्याति सारे संसार में फैली हुई है। इसके अलावा मनहर की एक और खासियत है और वो है गुजराती गजल। मनहर ने गुजराती गजलों की परंपरा को शुरू करके उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि आज गुजराती गजल और मनहर एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आइए अब मनहर के कुछ बेहद मकबूल गाने आप तक पहुंचाए जाएं। हम तो

0: दोस्तों हम आए तो समय पर ही थे और जा भी समय पर ही रहे हैं, इसलिए इस गाने के जरिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि हम देर से आए और जल्दी जाए और ऐसा ही भी ठीक नहीं, क्योंकि मंदिर के बारे में इतने सारे किस्से हमने आपको बताए, उनके तमाम मशहूर गाने भी आपको सुनवाए और अब इजाजत लेने का वक्त आ गया। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम हेलो हजारीबाग बस कुछ ही पलों में।

प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे सभी श्रोताओं को शुक का नमस्कार आदाब बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, मौसम में हो रहे लगातार परिवर्तन ने सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। प्रकृति तो अपना रूप दिखाती ही है। अब देखिए ना, गर्मी का वक्त और बारिश दिन में ठीक ठाक रहता है और शाम होते होते दोपहर होते होते बारिश और फिर उसके बाद ठंड का माहौल। चलिए, इसी बहाने कुछ गर्मी से राहत तो मिली। अब आज के तापमान के बारे में बात कर लें। आज का न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। शहर के लोकल इवेंट्स की बात करें तो भगवद गीता पाठ का आयोजन झील सेंटर में संध्या 6:30 से किया जाएगा और झारखंड अंडर 19 का ट्रायल मैच क्रिकेट मैच संजय सिंह स्टेडियम हजारीबाग में होगा। तो ये थी आज के कुछ लोकल इवेंट्स की जानकारी और ढेर सारे जानकारियों के खजाना और फिर अखबार की सुर्खियां, इतिहास के पन्नों की जानकारी सब कुछ है आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल आगाज कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ और आज मशहूर प्लेबैक सिंगर मनहर साहब का, जी हां, मनहर उदास साहब का जन्मदिन भी है, तो इसी को उपलक्ष्य में एक प्यारा सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं और हेलो हजारीबाग का शुभारंभ कर रहे हैं इसी गीत के साथ। जी, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, अब अखबार की कुछ सुर्खियों पर ध्यान देते हैं। और हजारीबाग में हजारीबाग भास्कर का पन्ना इस वक्त हमारे हाथों में है और मुख्य खबरों का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है वह 36 वार्डों की समस्याएं सुनी गई, नगर निगम बोर्ड की बैठक आज तय होगी रूपरेखा, चलेगा सफाई अभियान। शहर में 7 करोड़ से 36 वार्ड के 80 नाली और 80 गलियों का होगा निर्माण। स्वच्छता पर फोकस, तो ये अभियान शहर की साफ सफाई को लेकर चलाया जाएगा। 7 करोड़ की योजना को धरातल पर उतारने के साथ साथ आज से पूरे शहर में जहां तहां जमा कचरों की सफाई के लिए व्यापक अभियान चलने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के मेयर अरविंद कुमार राणा ने शहर के आम लोगों से सूचना देने की अपील की है। जहां भी कचरा जमा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसकी तस्वीर खींचे, लोकेशन दे और पोस्ट करे। इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही घंटे में वह साफ सुथरा दिखेगा। नगर निगम की नई टीम ने सभी वार्ड पार्षदों से अपने अपने वार्ड क्षेत्र के नाली और गली की सूची मांगी है। इस सूची के आधार पर यह प्रकलन तैयार किया गया है ताकि शहर में फिर से किसी नाली और गली की जरूरत का आवाज नहीं उठे। अरविंद कुमार राणा ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि 7 करोड़ की लागत से धरातल पर उतरने वाली योजनाओं के लिए वार्ड पार्षद से जो भी योजना मांगी गई है उस पर मेयर से राय नहीं लिया गया, न ही किसी तरह का डिस्कशन हुआ है। योजनाओं के निर्माण को तय मेयर को करना है, लेकिन मेयर का कंसेंट के लिए बगैर नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता से ही इसे तय कर दिया गया। इसलिए निश्चित ही बोर्ड की बैठक हंगामेदार होगा। सभी बिंदु पर चर्चाएं होगी। योजनाएं के चयन का आधार क्या है इस पर चर्चा होगी। हालांकि विकास योजना पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये व्यापक रूप से चलता रहेगा, चलाया जाता रहेगा। अब बिजली से जुड़ी खबर है कि हजारीबाग को जरूरत है 120 से 130 मेगावाट आपूर्ति, लेकिन 40 से 50 मेगावाट ही ये आपूर्ति की जा रही है, दी जा रही है। इसलिए कल दिन भर बिजली व्यवस्था का जो है सो ठप रही, लोगों को काफी जो है सो सामना करना पड़ा। इस खबर को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द स्थिति सामान्य करने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी खराबियों को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द ही आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल बिजली संकट ने जिले के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया डेमोटाड़ में डीवीसी की इस कटौती से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। महज दिन में कुछ घंटे बिजली आपूर्ति हो पाने से कल कारखाने में लोग मशीन नहीं चली। इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली कटौती की व्यापक असर देखने को मिला है।

और हजारीबाग एवं आसपास के क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए आपसे दरख्वास्त की जाती है, अनुरोध की जाती है कि आप हेलमेट के साथ ही निकले, अन्यथा आपका चालान काटा जा सकता है और वो भी भारी भरकम रकम के साथ।

चलिए अब एक और खबर की ओर रुख करते हैं। ये है कटकमसांडी ब्लॉक का खबर। कटकमदाग प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत अड़ार में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के पुरानी अराड़ स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में निर्माण के बाद से आज तक कभी नियमित रूप से चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी नहीं बैठे। करीब 10 वर्ष पूर्व लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बने इस स्वास्थ्य उप केंद्र का निर्माण तो कर दिया गया, परंतु यहां स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप भवन धीरे धीरे जर्जर होता चला गया और अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। भवन की खिड़की दरवाजे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भवन के चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं। देखरेख के अभाव में भवन की स्थिति पूरी तरह कंडम हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भवन बनाया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला है। और एक और खबर है, डीआईजी ने अधिकारियों के साथ की बैठक और उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की खरीद बिक्री वाले इलाकों को चिन्हित करें। क्या इस खबर में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक अंजनी कुमार झा ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से मादक पदार्थों, संगठित अपराध और गुमशुदगी से के लंबित मामलों पर चर्चा की गई। कड़े निर्देश जारी किए गए। डीआईजी ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया। डीआईजी ने निर्देश दिया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री वाले हॉट स्पॉट को चिन्हित करें, उसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आपराधिक गिरोहों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश भी दिया। ऐसे व्यक्तियों पर सीसीए लगाने, थाना हाजिरी का प्रस्ताव भेजने और उनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज करने की बात कही गई। डीआईजी ने जिले के थानों में गुमशुदगी से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, उनकी बारीकी से समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने गंभीर कांडों की मौके पर समीक्षा की। सभी पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारियों से को कई निर्देश भी जारी किया गया। जी दोस्तों, खबरें जारी रहेंगी। एक और गीत सुनवाते हैं।

दोस्तों अखबार की खबरें अभी जारी है, आइए खेल से संबंधित आपको खबर सुनवाते हैं। चौपारण प्रखंड के बहरा आश्रम स्थित सुरेखा प्रकाश भाई पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने थर्ड हजारीबाग सब जूनियर, जूनियर और सीनियर गतका चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर के विनर ट्रॉफी अपने नाम कर विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। पद्मा स्थित जेएमएम पब्लिक स्कूल में आयोजन इंटर स्कूल जिला स्तरीय गटका चैंपियनशिप में विद्यालय के लगभग 60 छात्राओं ने भाग लिया और खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 16 स्वर्ण, 15 रजत और 13 कांस्य पदक हासिल किए। एक और खबर है, जिले में 41 महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल लिटरेसी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। डिजिटल साक्षरता से महिला उद्यमियों को किया गया सशक्त। नवभारत जागृति केंद्र यानी एनबीजी के सहयोग से एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट द्वारा हजारीबाग के 41 महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल लिटरेसी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण 11 से 12 मई को होटल डेल्फिनो रिसोर्ट में उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रोजेक्ट आशा के अंतर्गत आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में शामिल सभी महिला उद्यमी पूर्व में नवभारत जागृति केंद्र द्वारा उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से संचालित उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम के तहत व्यापक सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मोबाइल फोन के विभिन्न फीचर्स, इंटरनेट सेवाओं तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यानी AI के व्यवहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। इसके साथ ही वित्तीय साक्षरता, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ बनाने से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। अब एक और खबर पर हम नजर डालते हैं। नीट परीक्षा इस बार भी रद्द कर दी गई है, 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़, ये प्रमुख खबर है। कुछ और खबरों का जिक्र कुछ विराम के बाद करेंगे। पहले एक गीत सुनते हैं, उसके बाद इतिहास के पन्नों की ओर रुख करेंगे। जी

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अशोक के साथ। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के पन्नों की ओर रुख करते हैं कि आज के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं जिक्र है। प्रमुख घटनाएं 1918 से शुरू होती है दोस्तों, और सबसे पहला जिक्र है भारत ने राजस्थान के पोखरण में दो परमाणु परीक्षण किए थे। 1995 में चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स 1995 बनी थी। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु प्रशिक्षण के विरोध में भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध की घोषणा की। जापान ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो की सुंदरी बेडी फिट्ज विलियम मिस यूनिवर्स 1998 बनी। 1999 की बात करें तो जापानी छात्र के नागोई विश्व की 7 सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया का सबसे कम उम्र यानी कि 25 वर्षीय का पर्वतारोही बनी। और सन 2000 में मिस इंडिया लारा दत्ता ने साइप्रस में संपन्न प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2000 का खिताब जीता। 2003 की बात करें तो रियाद में आत्मघाती हमलों में 29 व्यक्ति मारे गए और 2008 की अगर बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सभी 9 मंत्रियों ने जजों की बहाली के मुद्दे पर इस्तीफा दिया। और आज के दिन 2010 में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इला भट्ट को 2010 के निवानो शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2017 में आज के दिन दुनिया भर में वानाक्राई रैंसमवेयर से 100 से अधिक देश प्रभावित हुए थे। तो ये थी इतिहास के पन्नों की जानकारी, जो उन घटनाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी जो आज के दिन घटित हुए थे। अब एक गीत और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।

दोस्तों अब चलिए 13 मई को जन्म लेने वाले व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बता दें। आज के दिन 1901 में मथुरा प्रसाद मिश्र वैद्य, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1905 में आज के दिन जन्म लेने वाले की सूची है। 1905 में फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, आपात स्थिति की घोषणा के कारण उनका कार्यकाल काफी लोकप्रिय रहा। 1916 में सच्चिदानंद राउत रॉय, जो कि उड़ीसा के साहित्यकार थे, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1917 में असित सेन, हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर भारी भरकम शरीर वाले असित सेन को अवश्य फिल्मों में अभिनय करते देखा होगा। कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और बहुत दमदार अभिनय करते थे। जी हाँ, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1918 में टी बाला सरस्वती, जो कि भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना थी, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1951 में रविशंकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु थे, संसार भर में श्रद्धेय एक आध्यात्मिक और मनोवादी गुरु, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1955 में बिशन सिंह चौफाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म आज के दिन हुआ। 1956 में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं, उनका जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1857 में बात करें तो रोनाल्ड रॉय, जो कि ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका जन्म भी आज के ही दिन हुआ था। और श्रोताओं, जन्म लेने वालों की सूची में भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध, जैसा कि हमने आरंभ ही चर्चा किया था, पार्श्व गायक मरहर उदास साहब का ही काफी जन्मदिन आज के दिन है, तो उन्हें हम जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और आज के दिन यानी कि 13 मई 1943 को वो जन्मे, और उसके बाद फिर युवावस्था में वो मुंबई आ गए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनके गीतों की रिकॉर्डिंग में वो जाया करते थे, और वहीं से फिर दोनों की दोस्ती शुरू हुई। और उन्हें पहला मौका जो मिला वो विश्वास फिल्म से मिला। विश्वास फिल्म के सारे गीतों को गा रहे थे मुकेश साहब, लेकिन एक गीत की रिकॉर्डिंग जिस दिन थी, जी हाँ दोस्तों, उस गीत की रिकॉर्डिंग में मुकेश साहब बाहर चले गए थे और कोई सिंगर की तलाश थी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से चुकी ये मिल चुके थे, अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि मनहर को बुला लेते हैं, देखते हैं ठीक ठाक रहा तो फिर वही गाना रहेगा, फिर मुकेश साहब से राय ले लेंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। और वहीं से इनके फिल्मी करियर पार्श्व गायन की शुरुआत हुई। आई वो गीत सुनवाते हैं, जिस गीत को सुनकर मुकेश साहब ने कहा ये बहुत ही शानदार गीत है, इसे किसी भी सूरत में हटानी चाहिए और इसी गीत को रखो। तो मुकेश भी बहुत बड़े दिलदार थे और छोटे कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों की काफी इज्जत किया करते थे। आइए दो गीत पेश कर रहे हैं मुकेश, ये मनहर साहब के गाए, आनंद लीजिए।

श्रोताओं, विश्वास फिल्म का वो गीत हम आपको इस वक्त नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए होटल फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा युगल गीत आपके लिए।

चलो श्रोताओ, अब चलते चलते समय बहुत ही कम शेष बचा है, तो आज के दिन निधन हुए व्यक्तियों की सूची भी हम आपको बताते हैं। आज के दिन 2021 में इंदु जैन, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया समूह की चेयरमैन थी, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 2016 में बाबा हरदेव सिंह, जो कि भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 2006 की बात करें तो हेमलता गुप्ता, जो कि भारतीय प्रसिद्ध चिकित्सक थी, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। और इस सूची में 2001 के आर के नारायण, जो कि अंग्रेजी में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक थे, उनका भी नाम शामिल है। 2011 में बादल प्रसाद, प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक, और इन सब के अतिरिक्त रंगमंच के सिद्धांतकार का भी नाम शामिल है। 1962 में बीरभान भाटिया, जो कि भारतीय चिकित्सक थे, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। 1951 में हसरत मोहानी, जो कि लखनऊ के प्रसिद्ध शायर थे, उनका निधन भी आज के दिन हुआ था। और 1950 में रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर, जो कि जाने माने एक प्रसिद्ध पुरातात्विकविद थे, उनका भी निधन आज के दिन हुआ था। और 1626 में मलिक अंबर, जो कि मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े राजनीतिज्ञों में से एक थे, उनकी गणना की जाती है आज के दिन इस तरह को अलविदा कह गए, यानी कि उनका निधन हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की संपूर्ण जानकारी, और एक गीत के साथ कार्यक्रम का समापन करेंगे। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, अपने विचार अवश्य हम तक प्रेषित कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हजारीबाग। तो आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। और बस आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अशोक को फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, अनुमति दीजिए। नमस्कार, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी सुरक्षा भी करते रहिए, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। एक बार फिर से नमस्ते।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिलीज किए जाएंगे हमारे मुंबई केंद्र से। बस कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: राजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल

0: किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

0: जिस राह पे जाना है।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन। इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जय वालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा, इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगरधरिया और श्रेय घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवियम ने भी समारोह में मंत्री पद

0: शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेज मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनकी ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को। उनके जन्मदिन के मौके पर सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से। मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मन्नर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मन्नर उदास के आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मन्नर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि रोजाना शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनते हैं अलग अलग कार्यक्रम और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय गीतों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग और हवा महल में सुनिए झलकी ना बाबा ना। रात 8 बजे से लेखन है संजय श्रीवास्तव का, निर्देशन गोविंद पारिक का। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनोहर दास के जन्मदिन पर उन पर केंद्रित गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो उनकी आवाज में हैं। और अब आपको सुनवाते हैं जांबाज फिल्म का ये गीत मनोहर दास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

जांबाज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जानन जी का संगीत, मनहर उदास और साधना सरगम की आवाजें, इंदिवर के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।

0: من ارداس کنچن اور آنند کی آواز میں آپ سن رہے ہیں قربانی فلم کا یہ گیت اندیور کی سنگیت.
1: جب جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی.
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की. गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा.
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम.
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस प्रोमो से ठीक पहले आपने कुर्बानी फिल्म का गीत सुना. कंचन मनरदास और आनंद की आवाज है इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत. कार्यक्रम यादों की महफिल में आज पार्श्व गायक मनरदास के जन्मदिन पर उनकी आवाज से सजे गीतों को हम सुनवा रहे हैं, और अब सुनते हैं मनरदास, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में सौदागर फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ ही आज के कार्यक्रम के शुरुआत में आपने तो ढेरों बातें हम तक पहुंचा ही दी हैं, लेकिन हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इस एक पैराग्राफ में बहुत सारे शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित गीत, जिन पर आधारित गीत इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। तो आपके लिए इबारत तो पोस्ट कर दी ही जाती है और आपको ये पता लगाना होता है उसे पढ़कर कि कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। और कार्यक्रम का मजा भी इसी बात में है कि गानों की जो लिस्ट है, आपकी जो लिस्ट है, हमारी जो लिस्ट है, हमने जो सोचकर वो इबारत लिखी है, वो सोच आपकी सोच से मिल जाए और वो गाने मैच कर जाए। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गाने ना मैच करें, फिर भी आप फेसबुक कमेंट्स के जरिए पोस्ट पर ये बता सकते हैं कि क्या कि कौन से गाने आपको लगता है कि शामिल होंगे, हो सकता है वो गाने शामिल हो जाएं। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम तो नेहा शर्मा के साथ आप सुनने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में आज की इबारत या टेक्स्ट हमने जो लिखी है वो क्या है आपको बता देते हैं। जिंदगी की पहेली कोई समझ कहां पाया है, कभी तो जिंदगी एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मुश्किल, और कभी ऐसा ख्याल जो महका दे मन। जिंदगी एक ऐसी नदी जिसकी धारा बिना उलझनों के बहती है, कभी गाती झूमती और रचती है 100 अफसाने, और कभी इसकी हकीकत कोई जाने तो कैसे जाने। ये जीवन जैसे सपनों की कहानी, थोड़ी अनजानी तो थोड़ी जानी पहचानी। इसलिए तो कहते हैं जीना तो उसी का जीना है जो दे बेसहारों का सहारा, जिसके होते न कोई जीता न कोई हारा। तो ये है आज की इबारत या टेक्स्ट जिसमें छुपी हैं वो शब्द जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गाने मतलब शामिल हो सकते हैं। और आपने बहुत सारे गीत हमें लिख भेजे हैं, अलग अलग शब्दों को आपने छांट लिया और कहा है कि इन शब्दों पर गीत तो होने ही चाहिए। देखिए ये आपके कमेंट्स देखकर हमें ये अंदाजा हो गया है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट काफी हद तक तो मिल रही है। अब ये देखना है कि किन के जो गीत हैं वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिन्हें ऐसा लगा कि ये गीत शामिल होने वाले हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिंदगी की पहेली है, सवाल है, जवाब है, वो जो भी है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं वो पहेली? क्या आप भी परेशान हो जाते हैं या आप रखते हैं संयम और अपने आप को संभालते हुए अपनी जिंदगी को एक सही ढर्रे पर, सही रास्ते पर ले आते हैं? और क्या है अफसाना आपकी जिंदगी का, हमसे बांटिए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और हमें ये भी बताइए कि इसमें आवाज किसकी है।

0: रघु तो हंसाए कभी ये रुला।
1: मन्नाडे की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे बहुत से साथियों ने इस गीत के बारे में सोचा था कि ये गीत तो जरूर शामिल होगा। तो बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि एक टेक्स्ट का जो पहला अक्षर इस तरह से आए तो लगता है कि ये तो होना ही। लेकिन एक पहेली जो हमारे साथियों के मन में बनी हुई है, ये हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो कार्यक्रम को समझ में नहीं आ रहा, लगता है कि पोस्ट कब आती है पता नहीं चलता, तो लगता है कि कार्यक्रम के प्रसारण में कुछ परेशानी हो रही है या समझौता हो रहा है। तो हम इन्हें कहना चाहते हैं कि क्योंकि शुरुआती दौर में एक घंटे का जो अंतराल रहा करता था कार्यक्रम की पोस्ट और कार्यक्रम में, तो उस वक्त हमारे कई श्रोताओं ने कहा कि इतनी जल्दी टेक्स्ट में से शब्द खोजना या गीत सोचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बस इस असुविधा की सुविधा के लिए, असुविधा को सुविधा बनाने के लिए ही कार्यक्रम का टेक्स्ट जो है वो रात में आ जाता है, ताकि आपको एक लंबा समय मिले ये सोचने के लिए कि कौन कौन से शब्द शामिल हो सकते हैं, और आप अपनी पसंद के गीतों की लिस्ट भी हम तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट पर कमेंट के जरिए। और जिस तरह से इन्होंने ये बात लिखी, हमारे दूसरे श्रोताओं ने तो ये भी कहा है कि भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें कि रात में ही पोस्ट आ जाती है। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप रात्रि को ही कार्यक्रम की पोस्ट डाल देते हो, और उन्होंने जो साथ में इमोजीज डाली हैं उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बात से खुशी है। वहीं हमारे एक और साथी ने भी कहा कि पिछले जो रात में पोस्ट आती है उससे उन्हें काफी सुविधा हो जाती है, ताकि वो अपने जो भी बातें लिखनी है करनी है उसके लिए उन्हें एक पर्याप्त समय मिल जाता है। तो बस इस तरह से अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग बातें के साथ साथ अलग अलग विचार भी होते हैं। हमारी कौर साथी कह रहे कि इतनी जल्दी इबारत को हम श्रोतागण को शेयर करना कुछ कुछ सरल सा दिखता है, धन्यवाद विविध भारती परिवार। तो एक ही चीजों के दो अलग अलग पहलू देखने मिलते हैं हमें जीवन में भी। तो आप किस
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू, रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से चार बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन, सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया के संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने बिना नई खरीद के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर विवाद गहरा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कमेटी बनाने से पहले पूर्व अध्यक्षों को भरोसे में नहीं लिया गया। उन्होंने डिलिमिटेशन कमेटी में किसी भी आदिवासी नेता को जगह न मिलने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
3: केशव महतो कमलेश जी वो पार्टी के अध्यक्ष है ना, कोई व्यक्तिगत नहीं है, और उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलता। आदिवासियों को सीटें घटी और हमें एक को रखा नहीं है। ये क्या कमेटी आपने बनाया है? और आपने एसआईआर कमेटी रखा, लेकिन डिलिमिटेशन में सुखदेव भगत नहीं, बालमुचू जी नहीं, रामेश्वर जी नहीं, बंधु तिर्की जी नहीं, उनका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया।
2: झारखंड में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निर्देश पर श्रमिकों के लिए वर्ष भर चलने वाला निशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत नामकुम और आदित्यपुर ईएसआईसी अस्पतालों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों की जांच की जाएगी। बीमा आयुक्त प्रायण सिन्हा ने नामकुम अस्पताल का निरीक्षण कर अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। धनबाद नगर निगम बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का सर्वसम्मति से विरोध किया गया। मेयर संजीव सिंह की अगुवाई में बोर्ड ने टैक्स वृद्धि वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। बैठक में पेयजल संकट दूर करने के लिए पानी टंकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई।
4: बोर्ड में इस चीज का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10% वो उसको पुनः पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है।
2: राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया कि उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक व्याप्त है।
5: माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, वर्ष 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। उन्होंने वर्ष 2000 में बिहार सरकार और झारखंड गठन के बाद 2003 में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। सरल स्वभाव और स्पष्टवादी व्यक्तित्व के कारण वे बोकारो में काफी लोकप्रिय थे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
2: कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज धनबाद पहुंच रहे हैं। वे जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वे बेलगढ़िया टाउनशिप का दौरा कर विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण करेंगे। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रांची दिल्ली स्पेशल 23 मई को और टाटानगर आनंद विहार स्पेशल भी इसी दिन रवाना होगी। दोनों ट्रेनें 25 मई को दिल्ली से वापस लौटेंगी। रांची पुलिस ने हिंदीपीढ़ी इलाके में बड़े नशा कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली एएसपी निखिल राय के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, गांजा, नशीले इंजेक्शन और 8,74,200 रुपये नकद बरामद किए हैं। एएसपी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इलाकों में अलग अलग स्पॉट बना रखे थे, जहां प्लास्टिक के टेंट लगाकर ड्रग्स का सेवन कराया जाता था।
6: हमें सूचना मिली थी कि खेत मोहल्ला हिंडपीरी में कुछ लोग हैं जो नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। हमने तुरंत छापा मारा और 5 से 6 लोग को हमने अरेस्ट किया। तो हमें उसके अंदर टोटल लगभग 300 ग्राम गांजा, टेजोविन इंजेक्शन के 20 कैप्सूल, नाइट्रोजन 10 टैबलेट्स 40 की मात्रा में और लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर और 8.74 लाख कैश बरामद किया।
2: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती नुकसान की भरपाई करते हुए आज सुबह के सत्र में मामूली बढ़त दर्ज की। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 261 अंक बढ़कर 74,820 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 97 अंक बढ़कर 223,476 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज पलामू प्रमंडल और कुछ अन्य जिलों को छोड़ रांची सहित अधिकांश झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है, जहां 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और बारिश हो सकती है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संताल परगना सहित कई जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल ओरमांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार किया छोटा, ईंधन की बचत और आर्थिक मजबूती के लिए उठाया कदम। झारखंड कांग्रेस की नई कमेटी पर विवाद और गहराया। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के बाद सांसद सुखदेव भगत ने भी प्रदेश नेतृत्व के फैसलों पर उठाए गंभीर सवाल। राज्य में श्रमिकों के लिए साल भर चलने वाला मुफ्त स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। रांची के ईएसआईसी अस्पतालों में होगी 40 से अधिक उम्र के कामगारों की जांच। राज्य के पूर्व मंत्री और गोमिया से 4 बार विधायक रहे माधवलाल सिंह का निधन। सादगी और जनसेवा के लिए मशहूर माधव बाबू के जाने से राज्य भर में शोक। और रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रांची और टाटानगर से दिल्ली के लिए 23 मई को चलेंगी जनजाति दिवस स्पेशल ट्रेनें, 25 मई को होगी वापसी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आपको आया है जो अब तक आपको याद हो, कितने दिन बीत गए हों और फिर भी वो सपना याद हो, उस सपने में कोई ऐसी कहानी हो जो आपने जिंदगी में कभी सोची ही ना हो। हो सकता है कोई फिल्म देखकर आप सोए हों और वो सपना आया हो। हमारे एक और साथी कहती हैं कि भाई जिंदगी पर अनगिनत गीत हैं जो मन को सिर्फ छूते नहीं बल्कि बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और हर लाइन उसमें ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ सीख देती है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक समंदर है जिसमें सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहेंगी। और हमारे साथी हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि भाई शब्द नहीं गीत लिखकर पोस्ट कीजिए। तो मेरा ये सोचना है कि शायद उन्होंने श्रोताओं के कमेंट पर ही ये कमेंट किया है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी की पहेली है नदियों की धार जैसी बहती रहती है, मुश्किलों को पार करती हुई निरंतर बढ़ती जाती है। आगे उन्होंने ढेर सारे गीत लिखे हैं जो उनकी लिस्ट और हमारी लिस्ट मैच होती है या नहीं वो ये देखेंगे खुद से। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हर मुसीबत एक सबक लेकर आती है, मुसीबत में अनुभव से जीवन में सीखने को मिलता है, मुश्किल समय में धन का अभाव स्थिति को और कठिन बना देता है, इसलिए बचत और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करना जरूरी है। ये बात उन्होंने लिखी है जब हमने पूछा था कि भाई अगर मुश्किल वक्त आता है तो किस तरह से आप उससे बाहर निकलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि फिल्म के बारे में वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी कभी परेशान जब होती हूँ तो कुछ भी जिंदगी में थोड़े वक्त ठीक नहीं होते तो गाना सुनकर मन को शांति और कुछ रास्ता भी मिल जाता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जिंदगी की मुश्किल पहेली सुलझानी हो तो संयम के साथ निरीक्षण करना चाहिए, फिर सोच समझ कर आचरण करना चाहिए। वैसे तो जन्म बुद्धिमत्ता और भाग्य ईश्वर की देन है, फिर भी कठिन स्थिति में मेहनत के साथ प्रयत्न करना हमारे हाथ में होता है। और एक और साथी कहते हैं, जब मैं मुसीबत में होता हूँ तब शब्द कम पड़ जाते हैं तो मैं पुराने दौर के संगीत में अपनी सांत्वना ढूंढता हूँ। कुंदनलाल सहगल की आवाज या शंकर जयकिशन की धुनों में एक ऐसा ठहराव है जो मेरे घावों पर मरहम जैसा काम करता है। तो भाई जब संगीत इतना अच्छा काम करता है तो क्यों ना सवाल जवाब बनकर आपसे पूछते हैं, नहीं है कुछ भी पूछते हैं एक सवाल कि किस फिल्म का है ये गीत जो आपको सुनवा रहे हैं।

भाई तो हमारा सवाल तो ये था कि किस फिल्म का है ये गीत? ससुराल फिल्म का ये गीत है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपके भी कुछ सवाल हम तक पहुंच गए हैं। वैसे हमारे एक साथी ने कहा कि इस गाने के मामले में तो हमारी पसंद आपसे जा मिली और बहुत से साथियों की पसंद इस गाने के जरिए हम तक पहुंच गई और हमारी और उनकी लिस्ट भी मिल गई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे सारे सपने दिवा स्वप्न की तरह निकलते हैं, अथवा चर्चा अव्यर्थ प्रतीत होती है। हमारे एक और साथी ने बताया कि जीवन में एक बार उन्हें सपना आया था जब वो स्टेज पे गीत गा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का, कहना है कहना है, और ये गीत उन्होंने पूरा का पूरा स्टेज पर गा दिया। ये सपना आज तक नहीं भूले, शायद ये मेरे संगीत के प्रति दीवानगी, क्योंकि गाने का मुझे बहुत ज्यादा

शौक है। ये उन्होंने कहा, हमारे गौर साथी कह रहे हैं कि आपकी पोस्ट अभी बढ़िया डल रही है, जो बदलाव किया है अच्छा है। और हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं पोस्ट ही करना उचित है वीडियो की जगह। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जिंदगी को लेकर बहुत सी बातें हमारे साथी कहने लगे हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी एक पहेली, जिंदगी एक सवाल, जवाब मुश्किल, ख्याल महका, जिंदगी नदी धारा बहती गाती झूमती, अफसाने हकीकत। इस तरह से इन्होंने इबारत में से काफी सारे शब्द चुन लिए हैं और हमें तो पूरा भरोसा है कि इनके शब्द तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिस्ट से मिल जाएंगे। हमारे बहुत से साथियों ने गीत भी लिख भेजे हैं और उनके गीत जब हमारे लिस्ट के गीतों से मिलते हैं तो जो खुशी उन्हें होती है उतनी ही खुशी हमें भी होती है। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे अगर हम चलें और दूसरा गीत सुने तो हमारे साथी कौन से गीतों की फरमाइश कर सकते हैं और कौन से गीत उन्हें लगते हैं कि आ सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने ये भी कहा कि मेरा सपना तो मैं बहुत देखती हूँ, अलग अलग तरह के होते हैं। कभी मैं किसी को बचा रही हूँ, डाकू से बचा रही हूँ। मैंने एक सपना देखा कि एक लड़के को जब वो शादी में गया था वहां उसे देखा। सपने पूरे भी होते हैं कभी कभी, ऐसा इनका कहना है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि वो एक हीरो का किरदार निभा रही है अपने सपनों में, किसी डाकू का किरदार भी कई बार हम निभाते हैं अपने सपनों में। तो ऐसा कोई खतरनाक सपना आपको कभी आया है तो हमें बताइए अपने सपनों की कहानी। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर में जहां आपको नदिया और धारा की ये बात सुनने मिलेगी। और हमें बताइए कि किसने इस गीत को लिखा है और आवाज किसकी है।

सफर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज और साथ ही भी उनके साथ साथ में इंदिवर के बोल। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि भाई ओरिजिनल पेज कौन सा है और वो ये पूछ रहे हैं ओरिजिनल पेज के पोस्ट के कमेंट में, तो हम उन्हें बता दें जो भी और भी व्यक्ति जो जानना चाहते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हुआ है देवनागरी में और साथ ही उसमें एक ब्लू टिक भी बना हुआ है। और अगर आपको और ज्यादा जानना हो तो आप देख सकते हैं फॉलोवर 100K लिखे हैं, यानी 100,000 फॉलोवर हैं, 100,000 हमारे श्रोता हैं जो इसमें हमारे साथ शामिल हैं। तो इस पेज को जब आप देखेंगे तो इसमें जो भी पोस्ट आती है वो विविध भारती की तरफ से आधिकारिक रूप से पोस्ट आती है। तो बस ये देखिए कि विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हिंदी में लिखा हो, साथ ही उसमें एक ब्लू टिक शायद में बना रहता है, वो बना होगा फेसबुक पर www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको ये पेज मिल जाएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं बेसहारा और सहारा शब्द पर मेरी पसंद का गाना, उन्होंने बता दिया है गाना है तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। सपने के बारे में हमारे एक साथी ने बताया कि एक रात अचानक 3 बजे नींद खुली, उसका कारण ऐसा सपना था कि फाइनल ईयर के एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है, रिविजन करें। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मल हुए तो पता चला सारे एग्जाम पास करके रिटायर हो गए, तब जाकर नींद में चले गए। तो साथियों बुढ़ापे में भी जवानी के सपने याद आते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिखी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 25-30 साल पहले एक सपना उन्होंने देखा था जो आज भी याद आता है तो रूह कांप जाती है। अलग कमरे में मैं सो रही थी और माँ अलग कमरे में, मैंने सपने में देखा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई बहुत दूर, नींद में ही रोने लगी और सपना टूट गया। दौड़कर जब माँ के रूम में गई तो माँ से लिपट कर बहुत रोई। हमारे एक और साथी ने बताया 1987 का सपना, कि सपने में रात में उन्होंने देखा कि एक मानव आकृति आसमान में विचरण कर रही है। अगले सारे दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा और रात को हमें एक दुखद समाचार मिला कि पिताजी नहीं रहे। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। नदियां चले चले रे धारा, कितना गहरी फिलॉसफी इसमें छुपी है। ये गीत भी मेरे कयास से सही निकला, एक नाव वाला गा रहा है, पर्दे पर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर नदी के किनारे बैठकर भूंजा खा रहे हैं, मन्ना डे की आवाज है। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में और भी बहुत सी बातें। हमें ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आप अपने शहर से दूर आ गए हों और आपको लग रहा हो कि कितना मुश्किल है जीवन यहाँ। कुछ ऐसा गीत भी आने वाला है, वो गीत भी आप सोच सकते हैं कि कौन सा गीत होगा जो दूसरे शहर की, किसी शहर की मुश्किलों के बारे में बताता है। तब तक हम आपको अनुराधा फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, हमें बताइए किसने इसे लिखा।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूँ पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूँ। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे कौर साथी कहती है कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूँ, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूँ और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूँ। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूँ, कोई गिनती नहीं करती हूँ। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्ना डे और साथियों की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खास तौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रही है और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, यही हमारे सवाल का सही जवाब था। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: साथियों, इन दिनों हमारे देश के अधिकांश भागों में गर्मी अपने रौद्र रूप में है। सूरज निकलते ही शोले उगलना शुरू कर देता है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोग दिन को बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं। उन्हें शाम और रात का बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मी से बचाव का हर उपाय बेकार जान पड़ता है। लेकिन जिंदगी रुकती कहाँ है? इस भीषण गर्मी में भी लोग सफर कर रहे हैं और मजदूर चट्टाने तोड़ रहे हैं। मौसम की ये दुश्वारियां हजारों वर्षों से मनुष्य और जीव जंतुओं के साथ चल रही है। कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। इसी गर्मी से एक दिन समंदरों का पानी बादल बनकर बरसेगा, बीज उगेंगे, उत्सव मनेंगे और इसी सूरज की तपन से फल मीठे होंगे।
1: सूरज जरा आ पास आ, आज

जिंदगी में परेशानियों और चीजों को देखने का नजरिया हर इंसान का कितना अलग अलग हो सकता है, यह हम आसानी से अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तपते हुए लू के महीने से लोग इतने बेहाल रहते हैं, उसी महीने को एक शायर कितनी खूबसूरत मिसाल देता है, ये बेहद ठंडक देने वाली बात है। क्या रूपक है, सुनिए जरा।

ये तपन मनुष्य और प्राणी जगत की परीक्षा लेती है। यह हमें विकट परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करती है। तभी तो इस सर्वाधिक कठिन मौसम में पेड़ों में नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, गुलमोहर सजता है, मोगरा महकता है। और गर्मियों में ये जो हमारे शरीर से पसीना बहता है ना, ये मनुष्य की मेहनत और स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। इसीलिए तो ईमानदारी और मेहनत से कमाए धन को खून पसीने की कमाई कहा जाता है।

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी, सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में श्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में लाजवंती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को मजरूह सुल्तानपुरी के शब्दों के साथ, मदन मोहन की तर्ज फिल्म आखिरी दांव। सुनते हैं ये गीत।

गीता दत्त की आवाज में आप सुन रहे थे आवड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, कमर जलालाबादी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत, चंदन फिल्म का ये गीत, मदन मोहन का संगीत है, आवाज मोहम्मद रफी की।

जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे, हर चाबी का ताला।

लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन

मोहम्मद रफी की आवाज में काला पानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। ये गीत सुनिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

67,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधव लाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जनसेवा और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम को केवल जमानत मिली है, उन्हें आरोप मुक्त नहीं किया गया है। दुमका में दवा व्यवसायियों के विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ

0: एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर यह बंद आयोजित किया जाएगा। दुमका केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश प्रसाद साह ने बताया कि 15 मई से जिले के दवा व्यवसायी काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजय कुमार सिंह ने बताया कि उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
1: पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर क्षेत्र में कुछ लोग साइबर अपराध कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस निरीक्षक पारूक के नेतृत्व में एक छापा दल का गठन किया गया और उनके द्वारा वहां पर छापेमारी की गई। दो अपराध कर्मियों को साइबर अपराध करते हुए इक्विपमेंट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 7 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद हुए हैं।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब 1 दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किए गए हैं। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसनबाड़ी और कोलहरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया है। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: राजधानी रांची के कई इलाकों में आज दोपहर बाद हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रांची सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई को रांची, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने वाली अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए कलकत्ता पब्लिक स्कूल और मांझी के 9 खिलाड़ियों का चयन झारखंड टीम में हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले इन खिलाड़ियों में अनुष्का, शिवानी, सृजल, आकांक्षा और रिया सहित कुल 9 छात्र छात्राएं शामिल हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
2: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी जाएगा।
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
2: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
2: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
2: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, है ना।
1: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय
2: बता देते। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला दूंगी।
1: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता है।
2: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
2: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
1: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
2: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है
1: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना, क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने सुंदर सुंदर
2: आप मेंटेन है ना
1: ये तो वही तो बात है,
2: इसलिए हमें संतुलन रखना है।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
2: बिल्कुल आनंद,
1: संतुलन जरूरी है,
2: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियां, जिन्हें पश्मीना साड़ियां भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियां आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां, कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
2: कितनी
1: वो,
2: पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है, और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां

0: कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की सकती, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए और एक दो महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना, ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहां की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
0: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
1: बिल्कुल।
0: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे हैं।
0: भर भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो, मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारा यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई, और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ,
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भागदौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ,
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में, तो इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां
1: हाँ
0: मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते
0: गुजार
1: हैं।
0: सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है, यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ, जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रसस्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक
0: जी
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, न कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी
1: थी इस गाने है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी पायल बजने लगती है।
0: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक
0: अंतराल।

0: तो सोनाली, क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
0: क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है।
1: है, बहुत सुंदर
0: और
1: बात।
0: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता, अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे, जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
1: नहीं,
0: ऐसा
1: देखिए
0: लग रहा था।
1: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
0: क्या बात
1: ऐसा
0: है।
1: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते
1: एक
0: हैं।
1: हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए। सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए। अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहां रहते हैं वहां उगने वाली जो सब्जियां होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
0: बिल्कुल।
1: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं। वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम, अमरूद खाते थे,
0: हाँ,
1: बेर
0: सारे
1: खाते
0: फल।
1: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते
0: अरे,
1: हैं।
0: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे,
1: खाया
0: मतलब
1: जाता है।
0: खाया जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
1: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया
0: हाँ, हम नहीं बता रहे
1: तो
0: उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
1: जी
0: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है, वैसे
1: पढ़ने
0: मैंने
1: में
0: आपका
1: दिक्कत
0: पढ़
1: नहीं
0: लिया।
1: आती है ना।
0: हाँ, वो इजिली सी आंखों में अटैक कर जाता है,
1: जी
0: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
1: एक हमारे
0: दिक्कत नहीं।
1: साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है। लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है। लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सोनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
1: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा, माना कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया।
0: अच्छा, तभी तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो एक दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है ना,
0: इसमें मजा आता है जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब

0: भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे, अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी सफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब एक
0: क्या
1: दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है, वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचिए कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी, पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं। तो उससे पहले गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी है, चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हमें खास बात है, आपने बताई कि शक्करकंद के टुकड़े,
0: हाँ, आलू के बदले हम शक्करकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खाके ही खुश रह सकते हैं, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खाके भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले ही डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रस्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं। इस बारे में इंदौरियों से पूछे हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
0: सचमुच इंदौर बार बार जाने को जी करता है।
1: और देखो हमारे हर शहर में हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है सबका अलग स्वाद है, तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए चाहे आप लखनऊ चले जाइए चाहे आप गुजरात आ जाइए चाहे महाराष्ट्र आ जाइए राजस्थान चले जाइए और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
0: और खूब खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
1: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा
0: और आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंत्री वर्मा का
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान
1: सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेटा। इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के लिए आयोजित की गई थीं। बोर्ड के अनुसार परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20 रहा। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक तथा झारखंड बिहार में मंत्री रह चुके माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। माधवलाल सिंह गोमिया विधानसभा से वर्ष 1985, 1990, 2000 और 2009 में विधायक चुने गए। गुमला नगर भवन में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सहिया, साथी और बीटीटी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मिर्गी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रशिक चंद्र हासा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत

0: शुक्रिया यूनुस, वीर भारती परिवार को।
1: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
0: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
1: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
0: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
1: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
0: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे,
1: जिनकी
0: आवाज सुना, अनाउंसर, न्यूज रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है,
1: हाँ।
0: कोई जानता ही नहीं आपको
1: जी।
0: लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
1: जी,
0: रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी शुरू हुआ था
1: जी जी।
0: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक
1: के
0: रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये,
1: हाँ।
0: कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबारी का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या
1: जी।
0: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
1: जी,
0: और न सिर्फ आऊंगा
1: बल्कि हेड करेंगे
0: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस, एक से एक टेबल में क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम, और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर।

0: या पार्टिसिपेंट के तौर पर, और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहां पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरी पिताजी जो पोस्ट सेंट्रल ग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे।
1: ओके
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआत की दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात,
0: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको वो काम नहीं मिला जिसके हकदार थे, वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ, तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे। तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप, दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक कंसर्ट्स भी होते थे।
1: बिल्कुल, आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहां पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं, और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहां पे, और अच्छा चल रहा है मुझे
1: जी। और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो हाय रे वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: है ना, ये गाना सुन,
0: मेरा पसंदीदा गाना है
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था? जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुना हो?
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर, और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी।
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलो विक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी, मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है।
0: बिल्कुल
1: है ना, इसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था। हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
0: जी, ये हुआ है, लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
1: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी,
0: वाह,
1: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें, और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात, तो ये वो दौर देखा है हमने, थिएटर में जाकर फिल्म देखना, और स्कूल से भाग के भी देखना, और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्म गा रहे हैं, कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था, और म्यूजिक ही था
0: जी,
1: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
0: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था?
1: गाना चलता नहीं था
0: जी,
1: मैं गाता रहता,
0: खुद गाते था
1: तो वो घर वाले भी बार बार तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
0: जी,
1: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर धुनें भी बनाने लगा, और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर

0: फिर म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह
1: जी। रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी।
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी।
0: वो अभी भी चल रहा है, वो मेरा जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था।
1: वाह वाह।
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है।
1: वाह वाह।
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो। उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं। होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं।
1: वाह वाह।
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा।
1: वाह।
0: रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा।
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप,
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी।
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी।
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही।
1: हाँ।
0: तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपके नाम सुना होगा।
1: बिल्कुल।
0: गणपत लाल डांगी।
1: हाँ।
0: इनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में। हाँ। उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी। और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।
1: अच्छा।
0: और आज भी शायद वही होगा कि अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहां पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी।
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर 1 अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी।
0: वो राजस्थान में पहली बार ही हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा। उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था और उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। तीन साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, एक साल वहां काम किया।
1: तो वहां तो पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर।
0: और वहां पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहां पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, ये सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहां बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहां पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहां पे, हिंदी का पैक्स था वहां पे मैं, लेकिन एक से प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी,
1: थी, थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: एक साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहां पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले,
1: बिल्कुल
0: मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें पढ़वाया जाता
0: जी। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे। तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या बात है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई दरदर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना हूँ।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि

0: सम्मेलन के बाद तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चला थे सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम,
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे हैं तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सलून में भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 होने को है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
0: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान।

0: की।
1: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, बहुत ठंडा पानी था। लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत

0: खा जाते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
2: अब गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो चलते हैं।
4: चलो
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
3: अब
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: कोई खाने को दे तब ना।
0: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लो। गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत अच्छी है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: You just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली है।
3: जरा उधर देखो।
2: किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो से।
2: हाँ, आने तो आने तो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: सब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: सब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: सब मेरा गाँव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
7: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
7: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
7: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी, यस सर।
7: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर, उधर से।
7: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर,
7: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर,
7: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर,
7: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
7: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
4: यस सर,
7: अभी बज रहे हैं शाम के 5। मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी सर,
7: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
7: कोई शक?
2: नो सर।
7: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
4: यस सर।

0: चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
1: धीमे बोलो, धीमे
0: जी,
1: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
1: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
0: जी,
1: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
1: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हाथ गोला फेंकना।
0: जी सर।
1: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
1: ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे
0: धीरे धीरे
1: बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे जी सर।
1: कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले।
0: हाँ सर।
1: एवरीबॉडी रेडी।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश

0: इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है।
5: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
6: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम किरकेट्टा। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया, जहां मंत्री और विधानसभा कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास गोमिया ले जाया गया। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लहराकर होटल संचालक से विवाद कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। और खूंटी पुलिस ने PLFI के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 गोलियां और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं शान और शांतनु मैत्रा की आवाजों में फिल्म 3 इडियट्स का गीत।

इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म आशाएं का गीत, आवाजें मोहित चौहान और शंकर महादेवन की।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म आशिकी 2 का गीत। इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बागी से लिया है, आवाज अंकित तिवारी की।

और इस गीत के साथ ही आज का इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का नसीम की तरफ से आदाब जोहार नमस्कार। और आज हम अपने कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारी लाए हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फ़ायदे क्या हैं और सरकार ने इसको जो है कब लाया था। ज़रूरी संदेश भी सुनाएंगे, गर्मी के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल क्या कैसे करें इस पर भी बात होगी। फिल्म संगीत भी होगा और एक ज़रूरी जानकारी भी हम लाए हैं। वो जानकारी ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो हमारे श्रोता, हमारे किसान भाई, हमारे ग्रामीण भाई जो है वो कैसे उस ले पाएंगे। और फिर लतेदार सब्जी की व्यावसायिक खेती जो है वो कैसे की जाती है और इससे कैसे किसान भाई हमारे जो है वो लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो हमारी मिट्टी है वो अगर उपजाऊ है तो हमारी फसल भी उपजाऊ होगी, और अगर हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो हमारी फसल भी जो है उपजाऊ नहीं होगी, ज़्यादा पैदावार उसमें नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार की तरफ से जो है एक योजना है ये, जिसे किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए जो है शुरू किया गया था। ये योजना 2015 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य किसानों की मिट्टी की सही जानकारी देना है और ताकि उससे जो है अच्छी खेती करने में मदद मिले। इस कार्ड में मिट्टी के बारे में जो है जानकारी दी जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मिट्टी की अम्लता और जैविक कार्बन आदि की। अगर हमारी मिट्टी में ये सारे पोषक तत्व अगर हैं तो हमारी मिट्टी जो है वो उपजाऊ होगी, अन्यथा क्या है कि हम कितनों ही मेहनत कर लें हमारी उपजाऊ जो है वो कम होती जाएगी। दूसरी बात यह है कि मिट्टी इस कार्ड से जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से फ़ायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला तो फ़ायदा होती है कि मिट्टी की स्थिति का पता चलता है कि हमारी मिट्टी की स्थिति क्या है।

दूसरा ये है कि कौन सी खाद कितना डालना है, इसकी जानकारी भी हमको जो है इस कार्ड के माध्यम से जो है वो मिलती है। फसल की पैदावार जो है इसे बढ़ती है, खेती में जो है खेती का जो खर्चा होता है वो कम होता है, मिट्टी की उर्वरता जो है वो इससे बनी रहती है, इससे सही फसल चुनने में हमें मदद मिलती है, रासायनिक खाद का गलत उपयोग जो है वो कम होता है। श्रोता देखिए, आज हम जो है अपने उपज को बढ़ाने के लिए जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल जो है बहुत बड़ी संख्या में करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी ख़त्म होती जा रही है और हमारी फसल जो हो रही है वो तो बिल्कुल चमकदार हो रही है, बड़ी हो रही है, उत्पादन जो है बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव जो है हमारे शरीर पर भी पड़ रहा है। तो ये मिट्टी की जांच अगर हो जाए तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उससे हमें उसका हमें फ़ायदा होगा कि हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकें। और अब रही बात कि यह कार्ड कैसे बनता है, तो खेती की मिट्टी का नमूना लिया जाता है, जिसे है जो है चारों कोनों से और बीच से जो है एक एक फीट डेढ़ डेढ़ फीट गड्ढा करके वो मिट्टी जो है वहाँ से ली जाती है और हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ जाके जो है अपनी मिट्टी की जांच करा सकते हैं। प्रयोगशाला में इसकी जांच होती है, जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करके किसानों को कार्ड जो है वो फराहम किया जाता है, दिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, इससे वैज्ञानिक तरीके से खेती संभव हो पाती है, उत्पादन बढ़ता है और मिट्टी लंबे समय तक जो है उपजाऊ बनी रहती है। तो ये इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जो है ये फायदे हैं कि हमें मिट्टी की अम्लता और मिट्टी की सही स्थिति जो है हमें जानकारी होती है, हमें इसका पता चलता है और हम जो है अपनी खेती को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। अब चलते हैं कुछ ज़रूरी ज़रूरी संदेश की तरफ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो अभी हम ने जरूरी संदेश सुना, अब आगे बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल जो है वो कैसे की जाती है। देखिए, अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, हमारा जो हाथ पैर जो है ये हमारे पशु हैं, अगर इनकी हिफाजत हम सही से कर पाएँ तो हमारी खेती भी सुधरेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है वो मजबूत होगी। और जो अगर हम इन पे अच्छी तरह से हमने ध्यान दिया, इनकी देखरेख की, इनके खाने पीने का, इनके रहने का अगर सही व्यवस्था हमने की, तो ये हमारे जो है बहुत ही अच्छा साबित होते हैं। गर्मी के दिनों में पशुओं की देखभाल जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अधिक गर्मी से पशु बीमार होते हैं और दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। पशुओं की देखरेख जो है हमें खासकर जो है साफ़ सफाई और ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पशुओं के को दिन में कई बार ठंडा पानी और ताज़ा पानी पीने के लिए देना चाहिए, ताकि उनके उन पानी की कमी जो है उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। ज़्यादा ये छायादार स्थान में उनको रखना चाहिए। पशुओं के को पेड़ के छायादार पशुशाला में रखना चाहिए। पशुशाला के छत पर घास या पानी का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उससे जो है वो ठंडा रहे। उन जहाँ पे हम अपने पशुओं को रखते हैं वो ठंडा रहेगा तो उनको जो है आराम मिलेगा, उनको सुकून मिलेगा। और जब भी हम सुबह में उनको चरने के लिए छोड़ते हैं तो कोशिश ये करें कि सवेरे जो है उनको चरने के लिए छोड़ दें और 10-11

0: बरसात का के समय में जो है खासकर उनको बीमारियां होती हैं, तो उस पर भी हमें निगाह रहनी चाहिए कि बरसात के समय में जो है उनको क्या क्या बीमारियां हो रही हैं खासकर, उस पर भी अगर हम निगाह रखेंगे तो हमारी हमारे जो पशु हैं वो बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। और फिर हवादार जो है पशुशाला होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने जानवरों को रखते हैं, अपने पशुओं को रखते हैं, वो जगह भी जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए। और हम उनका जो घर है, उनका जो गुहाल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उसकी बनावट ऐसी होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से जो है वो हवा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये को हो कि खिड़कियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इन उपयोग से पशु स्वस्थ रहते हैं और इनका जो है दूध व काम करने की जो क्षमता होती है वो अधिक बढ़ जाती है। इसमें एक और बात और भी है कि गर्मी के दिनों में अगर रावा गुड़ का इस्तेमाल हम लोग करें उनके पानी में, उनको पानी में मिला के जो है दिया जाए तो उनके लिए अच्छा होता है। नमक पानी का इस्तेमाल करें, चोकर वगैरह जो होता है, खली वगैरह है, उसका इस्तेमाल हम लोग करें, तो क्या है कि उनके जो है खाने पीने की व्यवस्था अगर सही रहेगी तो वो हम पशु जो है हमारे हमारे जो है वो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और जो दुधारू जानवर हैं उनके दूध में भी जो है वो इजाफा होगा, उनके दूध में बढ़ोतरी होगी। और अगर अगर इस तरह से हमने किया तो हमारी अर्थव्यवस्था भी, हमारी इकोनॉमी भी, हमारी जो है माली स्थिति जो होती है वो भी किसी न किसी हद तक जो है वो बेहतर होगी। तो ये थी गर्मी के दिनों में पशुओं की देखरेख जो है वो कैसे की जाती है। हमें उम्मीद है कि इन बातों पर जो हमारे श्रोता जो है वो ध्यान देंगे। अब एक ज़रूरी जानकारी हम लाए हैं अपने श्रोताओं के लिए कि योजना की जानकारी, योजना जो है जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं दी जाती हैं, बहुत सारे ग्रामीण जो है हमारे हमारे जो किसान हैं उनको सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। लिहाजा आज हम जो है उसी योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे, किसानों को बताएंगे कि जो है हमारे लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं दे रखी हैं, जिसकी जानकारी के अभाव में हम उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और जो फ़ायदा सरकार की तरफ से हमें मिलना चाहिए था वो फ़ायदा जो है हमें नहीं मिल पा रहा है। बहुत तरह की जानकारी, बहुत तरह की योजनाएं जो है सरकार ने हमारे लिए रखी हैं। आज हम उन्हीं जानकारी पर, उन्हीं योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा में जो जानकारी दे रहे हैं वो हैं राजरंजन बेदिया, किसान हैं, कर्मठ किसान हैं, और जिन्होंने बात की है उनसे वो हैं नसीम अहमद फलाही। तो सुना जाए ये बातचीत।
1: आज हम रामगढ़ के कुंदरू कला पंचायत के गांव लोधभा में आए हुए हैं और आज हम यहां बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, उसका लाभ जो है वो किसान भाई जो है वो कैसे उठाए हैं। जो भी योजनाएं आती हैं जिसकी जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को नहीं हो पाती है और उसका लाभ जो है किसान है वो नहीं ले पाते हैं, तो आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं दी जाती हैं, जिसको वो अपनाकर अपने जो है आर्थिक स्थिति को उसको वो मजबूत कर सके। आज हम उन्हीं योजनाओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जो है हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत।
2: जी जोहार सर, मेरा नाम राजरंजन बेदिया हुआ और मैं रामगढ़ जिले से ग्राम लोधमा से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल अभी 2.5 से 3 एकड़ में अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल किसानी कर रहा हूँ, जिसमें हॉर्टिकल्चर के तहत आम बागवानी लगाया हुआ हूँ। इसमें साथ में तालाब के साथ मछली पालन और बत्तख पालन भी कर रहा हूँ।
1: आप युवा हैं और अभी आपकी पूरा जीवन आपका जो है पड़ा हुआ है, आप खेती बाड़ी में और बागवानी में आ गए।
2: जी सर, मेरा मन खेती बाड़ी में इसलिए लगता है क्योंकि खेती बाड़ी एक ऐसा फील्ड है जिसमें काम करने में एक अलग ही सुकून जैसा फील होता है, जो कि और फील्ड में आप काम करेंगे तो वो मजा नहीं है जो कि खेती किसानी में। और नए किसानों को, जो नया युवा लड़के हैं, उनको खेती बाड़ी में आना चाहिए क्योंकि अब खेती बाड़ी वो जमाना नहीं रहा जो पहले के युग में हुआ करता था। अब बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेती हो रही है और अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। हर किसान,
1: सरकार जो है किसानों के उत्थान

0: के लिए, उनकी उनकी तरक्की के लिए बहुत तरह की योजनाएं जो दे रही है, उन योजनाओं की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो?
1: सर यहाँ पे तो अभी झारखंड में बोला जाए तो बहुत तरह की स्कीमें चला रही हैं, झारखंड सरकार भी चला रही है और केंद्र सरकार भी चला रही है। तो मुख्य कुछ कुछ हम स्कीम्स के बारे में बताना चाहेंगे जो कि किसान अगर उस योजना का फायदा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाके उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि पहला हम योजना के बारे में बताने जा रहे हैं वो है पीएम कुसुम योजना, जो कि 90% सब्सिडी पे सोलर पंप मिलता है, जो कि ऑनलाइन अभी हो रहा है, उसका फॉर्म वगैरह सारा कुछ पीएम कुसुम योजना का पोर्टल में जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि वो सौर ऊर्जा से हमको ये पानी चलता है, तो उसमें हमको बिजली का कोई आवश्यकता नहीं रहता है और उससे हम आसानी से पानी पटवन कर सकते हैं।
0: कितनी जमीन होती है तब सरकार जो है इसमें सब्सिडी देती है?
1: वैसा कोई निश्चित ये नहीं है, लेकिन अगर आपका पास में अगर 50 डिसमिल में कम से कम जमीन हो तो ये 2 HP का मोटर पंप आपको सोलर पंप मिल सकता है। अगर अगर नहीं भी है तो आप अगल बगल का जैसे सामूहिक रूप से आप ये आवेदन दे सकते हैं, उसमें स्टाफ का प्रावधान है।
0: प्रक्रिया क्या होगी इसकी?
1: प्रक्रिया के लिए सर आपको पहले पीएम कुसुम योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, उसमें अप्लाई सेक्शन में जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को अच्छी तरह से भरना होगा, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट की नीड होगी, जमीन का रसीद, आधार कार्ड और एक सिग्नेचर और एक कुएं के सामने फोटो या फिर बोरवेल है या फिर तालाब आपके पास जो भी वाटर का सोर्स है वहां पे जाके आप खड़ा होइए, उसके बाद वहां का फोटो उसको खिंचवा के उसको अपलोड करना है, सारा चीज पेपरलेस वर्क होता है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप उसमें पेमेंट सेक्शन में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका एक आवेदन अप्लाई हो जाएगा।
0: केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिलती है उसमें एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं को, इसके बारे में विस्तृत बताएं।
1: सर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसे बोला जाए कि नाम सही है कि मिट्टी को हम जांच, उसका स्वास्थ्य को हम जानकारी कैसे लेना है, तो उसके लिए सरकार बहुत अच्छा ये योजना चला रही है जो कि सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हर जिला में होता है, जिला एक स्वास्थ्य मिट्टी जांच केंद्र, वहां पे आप निःशुल्क जाके ये ऑफिस में जाके मिट्टी कुछ ले जाके वहां पे अपना कलेक्शन सैंपल देके चेक करवा सकते हैं।
0: इसको पाने के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
1: मिट्टी जांच करवाने के लिए आपको मिट्टी का पहले सैंपल कलेक्शन होता है, उसके बाद फिर सैंपल को लेके प्लास्टिक में बैग में लेके जाके आप वहां पे ये जहां पे मिट्टी जांच घर है वहां पे आप देंगे, वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन बकायदा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो कुछ दिनों के बाद चेक होने के बाद वहां से एक सर्टिफिकेट आएगा जिसमें जो भी मिट्टी में जैसे 16 पोषक तत्व होते हैं तो उसमें आपका क्या कमी है वो चीज आपका उसमें डिफाइन किया रहेगा, तो उससे आपको पता रहेगा कि हमारे मिट्टी में किस चीज का कमी है उर्वरक का, तो वो चीज आप उसमें डालेंगे तो आपका पैदावार अच्छा होगा। इससे एक ये फायदा है मिट्टी जांच करवाने से।
0: मिट्टी जांच कहाँ होती है?
1: मिट्टी जांच हर जिले का या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में लगभग लगभग है, तो आप कहीं भी
0: कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी की जांच होती है।
1: हाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी रहता है, नहीं रहने से अल्टरनेट अगर सुविधा अगर कहीं पे होता है तो वहां से भी लोग साइंटिस्ट लोग जांच करवा देते हैं।
0: अच्छा मिट्टी की जो जांच होती है वो चारों कोना से लेकर और बीच से भी लेकर मिट्टी को जांच किया जाता है, फिर कैसे
1: उसका प्रक्रिया कुछ और है? कहीं पे ये ट्रेनिंग आप लीजिएगा तो उसके बाद अभी सैंपल कलेक्शन करने के लिए बताया जाएगा, ऐसे आप अननोन किसान अभी तुरंत कहीं से मिट्टी उठा के सैंपल करवाइएंगे तो अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अच्छा। आप जैसे कहीं पे अगर गोबर फेंके हुए हैं मिट्टी में, ठीक है, तो मिट्टी फेंके हुए आप वहीं से मिट्टी उठा लिए तो आपका तो वो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, या फिर कोई बगल से कोई आर के सामने से उठा लिए मिट्टी, अगर कोई बगल से यूरिया डीएपी अगर कुछ अपना किया होगा स्प्रे किया होगा तो साइड से अगर आपका जमीन में भी आ गया हो तो वो मिट्टी आप कलेक्शन उठा लीजिएगा तो आपका तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि मेरे मिट्टी में क्या कमी है। तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग होता है मिट्टी कलेक्शन कैसे करना है, तो वो ट्रेनिंग जो किसान कर लेंगे केवीके या फिर आत्मा में भी ये सब चीज ट्रेनिंग हमेशा मिट्टी जांच के लिए होता है, तो वहां से आप वो ऐसे एक्सपर्ट लोग से लाके मिट्टी को सैंपल कलेक्ट करवाते हैं तो आपको फायदा होगा।
0: केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक योजना है ई नैप, इसमें किसान हैं जो बड़े पैमाने पर खेती करते हैं वो अपने उत्पादन को ई पोर्टल के माध्यम से जो है अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है?
1: ई नाम अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट जब से आई हुई है तो ये एक नया योजना लेकर आई हुई थी, ई नाम करके ई नाम पोर्टल है जिसमें एप्लीकेशन है, ये अपना मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे जो किसान है वो। इससे क्या होता है कि ये डील होता है एक प्रकार का कृषि से संबंधित, जिसमें कि आप अपना सौदा जो भी आपका प्रोडक्शन निकल रहा है जैसे आम हो सब्जी जो भी वैरायटी आप निकाल रहे हैं वो आप इंडिया में या इंडिया से बाहर अदर स्टेट में आप कहीं से

0: बेचना चाहते हैं तो ये आप अपना वहाँ रजिस्टर करके अपना स्टॉक चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको 2800 राज से कहीं के भी व्यापारी रहेंगे तो वो आपको वहाँ से डाटा देखेंगे कि आपका पास, मान के चलिए मेरे झारखंड में बात करूँ तो मैं झारखंड में से हूँ तो यहाँ पे मान के चलिए शकरकंद ज्यादा होता है, तो शकरकंद का अगर हम उसमें क्वांटिटी चढ़ाएंगे जैसे कि मान के चलिए 50 क्विंटल यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो कोई अगर किसी को लेना हो अगर उत्तर प्रदेश में तो वहाँ से वो देखेगा कि इनाम पोर्टल के थ्रू कि झारखंड में भाई ये 100 क्विंटल का वहाँ पे स्टॉक है तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है इस टाइप से।
1: इसका मतलब ये है कि किसान जो भी अपना उत्पादन करते हैं और जब उसको ये नाम पे पोर्टल पे जब उसको अपना चढ़ाते हैं तो उससे रेट नुकसान होने का कोई इसमें वो नहीं है?
0: नहीं, वो उसमें आपका जो रेट में आप तय करेंगे कि नहीं कि मेरा इतना रेट में हमको सेल करना है, तो अगर किसी को पसंद लगेगा तो ही वो आपसे डिमांड करेगा या फिर नेगोशिएशन भी कर सकता है, आपका वो बकायदा कॉन्टेक्ट नंबर जारी रहेगा उसमें, तो वो व्यापारी का मतलब समझ लीजिए कि एक दूसरे मेल मिलाप होता
1: है। तो इससे जो है किसी तरह से जो है वो किसानों का फायदा यहाँ पे दिखता है?
0: हाँ, किसानों को फायदा होता है। किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हमको ये लग रहा है कि ये अभी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चलाई हुई है जो कि 90% सब्सिडी पे ये मोदी गवर्नमेंट दे रही है किसानों के लिए, ये बहुत बेहतरीन योजना है। इसमें 90% सब्सिडी के साथ में किसानों को बहुत अच्छा, इसमें ड्रिप इरिगेशन का पूरा फुल सेटअप मिलता है जिसमें 2-3 वैरायटी का आप जैसा भी लगाना चाहिएगा, स्प्रिंकलर लगाना चाहिएगा तो स्प्रिंकलर लग जाएगा, रेनगन लगाना चाहते हैं तो रेनगन लग जाएगा, फिर आप जैसे टपक सिंचाई में जैसे कि 1-1 फीट के डिस्टेंस में आप मिर्चा या फिर लतेदार सब्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, जिसमें मतलब 7-8 हजार रुपए प्रति एकड़ में लगता है किसानों को। ये इसको लगाने से एक ये फायदा है कि आप कहीं भी रहिएगा आराम से, एक बार स्विच ऑन करिए आपका फील्ड पूरा पटेगा, आप कहीं भी रहिए आराम से, आपका टाइम का बचत होगा, आपका मेन पावर घटेगा, आपका पैसा कम लगेगा और आपका खेती अच्छा रहेगा, टाइम टू टाइम पानी भी मिलेगा तो आपका फसल भी बहुत अच्छा उत्पादन देगा।
1: इसमें कितनी जमीन होगी तब जो है ये सुविधा आपको मिलेगी?
0: ये कम से कम 50 डिसमिल से ये आप योजना ले सकते हैं, अगर आपके पास 50 डिसमिल का अगर प्लॉट है तो उसमें से आपको ये ड्रिप का सिंचाई का योजना आप भर सकते हैं।
1: समूह में इसको हम ले सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, समूह में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल आप कोई फार्मर भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी सेपरेट ले सकते हैं।
1: यानी इसमें जो है 90% जो है वो सरकार देती है, बाकी 10% जो है
0: किसानों को देना पड़ता
1: है, वो किसान अपना लगाना होगा। कृषि क्रांति योजना के बारे में क्या?
0: जी एक झारखंड की बहुत बेहतरीन योजना है सर जी, हम बताना चाहेंगे बिरसा हरित ग्राम योजना, जो कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आपको आम बागवानी, मिक्स बागवानी या फिर जो भी आप लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार देती है, इस टाइप का स्कीम चला रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5-6 साल से हो चल रहा है ये हम 5-6 साल से जब ये योजना चल रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसमें आपको फ्री में पौधे और क्या बोलते हैं आपका लगाने के लिए जितना भी खाद वगैरह मटेरियल का भी जो सुविधा है सारा चीज़ मनरेगा के थ्रू मिलता है फ्री में, और ये आपका उसमें पेड़ पौधा को देख रेख के लिए उसमें सरकार बकायदा उसको पैसा भी देती है वेजेस के रूप में।
1: बिरसा सिंचाई कुप योजना
0: जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान रह रहे हैं पंचायत स्तर से अपना कुआं का ये कर सकते हैं, कुआं ले सकते हैं जिसमें 12x35 का कुआं मिलता है, जिसमें 12 फीट चौड़ाई 35 फीट गहराई, इसमें लगभग एस्टिमेट वही 4 लाख के अप्रोक्स रहता है, तो कुआं अपना खुदवा सकते हैं। ये योजना हर पंचायत में मिलता है तो पंचायत के सचिवालय में जाना है और पंचायत सचिव जो रहते हैं जो मैडम या सर रहेंगे उनसे भेंट करके आप योजना को ऑनलाइन चढ़ा ये योजना अपना वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं नाम।
1: केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक फसल बीमा योजना जो है वो किसानों के लिए जो है ये दिया जाता है, प्राकृतिक तौर पर जो है जब कोई आपदा आती है तो उसमें किसानों को की फसल को नुकसान होता है,
0: आपदा के लिए देती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन होता है 1 प्लॉट पर, तो वो आप रजिस्ट्रेशन करवाए रहेंगे तो अगर आपका अगर क्षति हुआ रहेगा तो फिर उसका मुआवजा सरकार देती है, इस टाइप का गवर्नमेंट चला रही है स्कीम। और मेन किसानों को चाहिए कि सोलर पंप चाहिए जो कि पीएम कुसुम योजना से आपको मिल सकता है, दूसरा है कि ड्रिप सिंचाई योजना जो कि वो भी 90% सब्सिडी के साथ में है प्रधानमंत्री का जी जो चला रहे हैं, वो योजना बहुत बेहतरीन योजना है। बाकी ये जो आपका ट्रैक्टर के लिए है तो आप वो 50% सब्सिडी पे भूमि संरक्षण विभाग से आपको मिलता है। अच्छा। वहाँ से भी आप ट्रैक्टर योजना ले सकते हैं, और तालाब वगैरह डोभा के लिए भी आप मनरेगा से लीजिए या फिर कोई और विभाग से, जिस विभाग से भी आपको अगर उचित लगता है कि नहीं से, अगर सीएसआर फंड से ही अगर हमको मिल जा रहा है, सीएसआर फंड जो होता है कि कोई कंपनी अगर कहीं पे अगर कुछ बगल में चला रही है तो उसको 2% उसको आजू बाजू के जितना भी गाँव ग्राम

0: था, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, तो उससे भी आप ले सकते हैं, इस टाइप का योजना आप उस वहां से उठा सकते हैं।
1: आपने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमारे किसान भाइयों को और हमारे श्रोताओं को दी। आखिर में जो आप हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे बेरोजगार युवा के लिए आपका कुछ संदेश?
0: जिनके पास जमीन नहीं है वो लीज पर तो ले ही सकते हैं जमीन, वो केवल वो चाह लेके हमको खेती बाड़ी में जुड़ना है, तो पहले तो उनको कृषि विज्ञान केंद्र, अपने निजी जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है या फिर आत्मा विभाग है या फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, वहां से जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ के ही वहां से टेक्नोलॉजी या फिर जो भी जानकारियां लेना है वहां से लेने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना संपर्क किए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप यूट्यूब का केवल तो सहारा ले सकते हैं, देखेंगे कितना मुनाफा है, ये है वो है, बहुत सारा झूठ सच भी रहता है, लेकिन आप जो जब तक जमीनी स्तर पर आप नहीं मिलिएगा कोई पदाधिकारी या फिर साइंटिस्ट लोग से नहीं संपर्क में रहिएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी किसान कुछ नया फील्ड में करना, इस कृषि फील्ड में करना चाहते हैं और अपना कुछ अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो कम से कम कृषि विज्ञान केंद्र या आत्मा से जुड़े और उसके बाद वहां से कुछ जानकारियां कलेक्ट करें, उसके बाद अच्छे से जमीन धरातल पर काम करें, तो जाहिर सी ही बात है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। हम लोग जुड़े हुए थे 4-5 साल हो गया, बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं, आज अब सालाना आय की बात करें तो हम 4-5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और मेरा विजन है कि एग्रो टूरिज्म बनाना, क्योंकि झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट लोग कम आते हैं, तो कृषि को एक ऐसा मॉडल बनाए कि जहाँ की बाहर से लोग आए देखे और मतलब यहाँ पे स्टे करे और थोड़ा सा आपका किसानों को इनकम भी कुछ हो और मतलब उससे मुनाफा भी और उनको अच्छा भी मन लगे।
1: तो ये थे राजरंजन बेदिया, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू और बहुत ही मेहनती, लगनशील। तो बेदिया जी, आप हमारे श्रोताओं को और हमारे लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर धन्यवाद आपका भी, जो आपने भी मेरे लिए इतना समय निकाल के इतना दूर से आए और आपने मेरा ये किया, मेरा किसान, मेरा बात को किसानों तक पहुंचाने का कोशिश किया, तो इसके लिए कुछ 2% भी किसान मेरी बातों को सुनकर अगर योजना का फायदा ले लेंगे तो जरूर से आगे बढ़ेंगे, मेरी उनके उनके साथ मतलब आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, धन्यवाद।
1: तो ये थे राजरंजन बेदिया, जो सरकार की तरफ से दिए जाने वाले योजनाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे थे। अब कार्यक्रम के अंत में चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देते हुए राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड में वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को 5-5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया, जहां मंत्री और विधानसभा कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका जिले के सालतोला गांव में 26 किसान सामूहिक खेती के तहत 6 एकड़ भूमि पर करेला, तरबूज और भिंडी की खेती कर रहे हैं। क्लस्टर आधारित खेती मॉडल से किसानों ने लागत कम की है और आधुनिक तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र में देसी कट्टा लहराकर होटल संचालक से विवाद कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: युवानी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम युवा दोस्तों को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम हाजिर हैं इस कार्यक्रम में जिसे आप सब युवा साथी बेहद पसंद करते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम आपसे कुछ जानकारी भरी बातें करेंगे, साथ ही साथ कुछ मधुर और सुरीले गीतों से करेंगे आपका भरपूर मनोरंजन भी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन

0: पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
0: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: युवा दोस्तों, हाल के दिनों में आप समाचारों में ये सुनते होंगे और अक्सर आपको ये जानकारी मिलती होगी कि हाईवे पर कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और सच पूछे तो इन दिनों इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। और जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसमें कई कीमती जाने भी जाती हैं, और इसके अलावा संसाधनों का नुकसान भी होता है। तो निश्चित रूप से हम सब ये जाने कि आखिर दुर्घटनाओं में ये जो बढ़ोतरी हो रही है इसके क्या कारण है। तो दोस्तों, युवा साथियों, यातायात के सुचारू संचालन और सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियम बनाए जाते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि जब लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं और इनका भलीभांति पालन नहीं करते हैं तभी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में सरकार और विभाग द्वारा अलग अलग प्रकार के जो ये नियम हैं इनका पालन करना बहुत जरूरी है, और इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए कि बहुत कम लोग इसका पूरी तरह से पालन करते हैं। यातायात नियमों का पालन भलीभांति नहीं करने का नतीजा ये होता है कि आए दिन सड़क हादसों में लोगों की कीमती जाने जाती हैं। दोस्तों, अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इससे न केवल आप अपनी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं, और अन्य लोगों को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, साथ ही ट्रैफिक ग्रिडलॉक के कारण समय की अनावश्यक हानि होती है। और दोस्तों, इसके ठीक विपरीत यातायात नियमों का पालन कर हम रोजाना होने वाले सड़क हादसों पर न केवल अंकुश लगा सकते हैं बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर हम यातायात नियमों को सुचारू करते हैं, और साथ ही साथ नागरिकों को अनावश्यक ट्रैफिक जाम से भी निजात दिलाते हैं। युवा दोस्तों, ट्रैफिक के जो नियम हैं आमतौर पे जो महत्वपूर्ण हैं, इन पर सबों को इनका पालन करना चाहिए। अगर हम इस पे चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है पार्किंग की। तो हमें अपने वाहनों को जो निर्धारित स्थल होते हैं वहीं पार्क करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग यहाँ वहाँ वाहनों को पार्क करते हैं और इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो रास्ते या मार्ग हमारे लिए निर्धारित हैं, आवंटित हैं, उन्हीं रास्तों का उपयोग करना चाहिए। वाहन परिचालन के दौरान ओवरटेक करते समय पहले समुचित जगह बना लेनी चाहिए। नो एंट्री पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वाहन परिचालन के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही हॉर्न का उपयोग करना चाहिए। हमेशा अपनी लेन पर ही वाहन का परिचालन करना चाहिए। निर्धारित जो गति सीमा होती है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। और जब आप शहर में या हाईवे पर वाहन परिचालन कर रहे हैं तो कई प्रकार की लाइट्स होती है जो अलग अलग संकेत आपको देती है। ऐसे में ट्रैफिक में सिग्नल अगर लाल हो तो अपने वाहन को वहां रोक देना चाहिए। जो पीली लाइट्स होती है, येलो लाइट्स, वो आपको इस बात का सिग्नल इशारा देती है कि अब सिग्नल बदलने वाला है, आप तैयार हो जाएं। और जैसे ही हरी लाइट्स जले तो आप अपने वांछित दिशा में आगे बढ़ जा सकते हैं। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन हम सबों के लिए बेहद जरूरी है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सब जानते हैं कि हम जो भाषा और साहित्य का की पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग महत्ता होती है। कुछ भाषाएं सुनने जानने में कठिन और क्लिष्ट प्रतीत होती हैं, मगर उन्हें आप निश्चित रूप से जनोपयोगी बना सकते हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको एक भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं। विषय है संस्कृत को बनाएं जनोपयोगी भाषा। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सुबीर कुमार और श्री राजदीप घोष। भेंट करता है परमेंद्र कुमार मिश्रा। तो आइए सुनते हैं इस भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: श्रोताओं, यूं तो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए कई पहल किए जा रहे हैं सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर, लेकिन हमारे विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी इस ओर कई पहल किए जा रहे हैं। आज इसी संदर्भ में हम बातचीत करते हैं पाठ्यक्रम समन्वयक श्री सुवीर कुमार सर से। सर, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: आप हमें ये बताइए कि संस्कृत के लिए जो पहल की जा रही है वो क्या है और इस पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग टीम है जो कि दिल्ली की है, उन लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में कोर्स बना रखे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हर एक स्टेट वाइज, जिनको उन लोगों ने अप्रूवल दिया है कि आप कोर्स चला सकते हैं। जिनके लिए वो क्या है, एक टीचर का वो सेंटर फॉर संस्कृत वो लोग डिप्यूट करते हैं, हर एक संस्था में वो टीचर आते हैं और वो 2025-26 का जो सेशन है हमारे यहाँ यूसेट को मिला है, हजारीबाग में इंजीनियरिंग कॉलेज जो विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर में यूसेट है उसको सेंटर मिला है, जो अगले साल 2026 तक हमारा ये कोर्स चलेगा।
1: मतलब मई 2025 से लेकर के मई
2: 2026 तक चलेगा। ये 8 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है, जिसमें 120 डेज क्लासेस होंगे। हमारा प्रोग्राम क्या है कि जिस अनुसार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उनके हिसाब से हम लोग फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन हम लोग क्लास के लिए देंगे। जो भी टाइम शेड्यूल होगा हम लोग प्लान उस अनुसार से बना लेंगे। इस कोर्स में क्या है कि 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन फी है। आपको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग का लिंक है, आप उसको लॉग इन करना है, उस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर जो भी बच्चे ये फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स है जो पास कर लेंगे, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, इच्छा हो गई कि हमें सर्टिफिकेट लेनी है, तो उन्हें फिर से उसी पोर्टल पे जाके एग्जामिनेशन फी 300 रुपए देके रजिस्ट्रेशन कर लेना है एग्जामिनेशन का, जो नेक्स्ट ईयर 2026 में मई में होगा और वो एग्जाम ऑनलाइन होगा। जो भी ऑनलाइन एग्जाम दे करके पास हो जाएंगे उनको सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग वो फर्स्ट लेवल सर्टिफिकेट का संस्कृत का नॉलेज का डिग्री दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें क्या है, 1200 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फी आपको लगेंगे उसमें सेंट्रल टीम ने 5 बुक आप लोग को देगी, 500 रुपए की बुक वो लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं फर्स्ट बुक वर्णमाला का होगा, दूसरा वाक्य व्यवहार का होगा, तीसरा वाक्य विस्तार का होगा, चौथा संभाषणम का होगा और परिसिस्टम का होगा। माना जाए तो इस 5 मॉड्यूल में इन्हीं चीजों को पढ़ाया जाए, ठीक है। खुले शब्दों में बोलूं तो संस्कृत का हमें चाहत है कि एक दूसरे के जवानी पे आ जाए, जैसे हम और आप दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं हिंदी में
1: मातृभाषा
2: के रूप में जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो क्लास में क्लास करने के बाद जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे हमारा इच्छा होगा कि हम लोग संस्कृत में बात करके, हम यही सीखे।
1: बहुत अच्छी पहल है सर।
2: हाँ, कि सभी सेंट्रल की भी यही सोच है, संस्कृत लर्निंग का भी वही सोच है, उनका यही फर्स्ट मोटो भी है कि कम से कम सीखा जाए, दैनिक भाषा में वो यूज करा जाए, मातृभाषा के रूप में यूज हो जाए।
1: जी, अब ये सिर्फ देवभाषा नहीं है सर, ये तो हम लोग की जितनी भी पुस्तकें हैं पुरानी पुस्तकें वो सभी संस्कृत भाषा में है।
2: हाँ,
1: तो इसी बहाने हम जितने भी हमारी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करके हम अपने संस्कृति को बेहतर समझ सकते हैं।
2: ठीक है, अगर लगता है कि किन्हीं को और ज्यादा पढ़ना है, जैसे 1 ईयर कोर्स करने के बाद उनको लगे नहीं मुझे और पढ़ना है
1: जी,
2: तो उसके बाद उनको दक्षता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
1: वो कितने
2: जो ये कोर्स कर लेंगे उनको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए फिर से दिया जाएगा। उसमें ये अभी 8 क्रेडिट का है जो अगले दक्षता का जो सर्टिफिकेट मिलेगा और 12 क्रेडिट का होगा, वो भी 1 ईयर का कोर्स होगा और हमारे ही संस्थान में जो पास करेंगे वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनको उचित दिया जाएगा। फिर हमारे यहाँ से सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग ने एक शिक्षक को नियुक्त कर रखा है, राजदीप घोष जी हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे जानकार हैं, है ना, उनका भी पकड़ अच्छा है सब्जेक्ट में, घुलनशील भी है सब्जेक्ट के मामले में, संस्कृत मातृभाषा है तो घुलनशील लोग रहे तो ज्यादा बेहतर है, वो भी आपको इस पे विशेष बातें पे आपको प्रकाश डाल के समझा सकते हैं कैसे।
1: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पाठ्यक्रम के बारे में और संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी और सम्यक जानकारी दी। और अब हम बातचीत करते हैं राजदीप घोष जी से, जो इस संस्कृत पाठ्यक्रम के शिक्षक हैं, और इनसे जानते हैं कि आज संस्कृत की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, और पाठ्यक्रम को किस तरह से पढ़ाएंगे। सर आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार सर, सभी लोग जानते हैं कि हमारा संस्कृत भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन भाषा है, जहाँ से बहुत सारे भारतीय भाषाओं का सृष्टि हुआ है। तो वो जो भाषा सृष्टि हुआ है संस्कृत भाषा से, वो हम हिंदी बांग्ला जैसा है वो हम कम बेसी जानते हैं, लेकिन उसका उत्स जो है संस्कृत भाषा, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता नहीं है। हम संस्कृत में पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते। तो इसलिए समाज के सभी लोगों के लिए, सभी लोग संस्कृत जैसे पढ़ सके, लिख सके, कह सकते हैं, इसलिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षणम ये एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसका अभी वर्तमान नाम है संस्कृत अध्ययन केंद्रम, सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग, जहां संस्कृत का बहुत प्रचलन नहीं है, मतलब आयुर्वेदिक कॉलेज जैसा है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा है, वहां संस्कृत पढ़ाने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा ये संस्कृत अध्ययन केंद्र शुरू हुआ है, जहाँ दो कोर्स रहते हैं, एक संस्कृत भाषा प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम है और दूसरा संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम है। सर ने भी जो बताया, सुबीर सर ने, वो कोर्स पहले जो 15 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग ये सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण जो होंगे जो स्टूडेंट, तो उन लोगों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी है जो दक्षता पाठ्यक्रम है। ये दोनों ही क्रेडिट बेस्ड कोर्स है, वो फर्स्ट वाला जो है सर्टिफिकेट कोर्स वो 8 क्रेडिट का है और डिप्लोमा कोर्स 12 क्रेडिट का है। तो जो स्टूडेंट अभी वो पढ़ेंगे उन लोगों को संस्कृत के बारे में पता चल जाएगा। वो हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है जैसा है, वो एक महीने के अंदर ही संस्कृत भाषा में बातचीत कर सकते हैं, ऐसा ही हमारा संस्कृत कोर्स है।
1: तो ये दूसरे यूनिवर्सिटी में भी इस तरह की कोशिश की जा रही है?
3: ऐसा है, ये झारखंड राज्य में दोनों सेंटर है, दोनों जगह में, एक तो हजारीबाग में हमारा यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यूसेट में है, और एक चल रहा है रांची में, वो एनएन घोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ऐसा कुछ नाम है, वहाँ भी एक सेंटर चल रहा है, वहाँ से लोग रांची का लोग वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ हजारीबाग के लोग यूनिवर्सिटी में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इससे मतलब वो जहाँ मतलब हजारीबाग के अंदर ही जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको संस्कृत के बारे में जानना आवश्यक है, तो उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन लोगों के पास जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन कुछ है, तो वहाँ भी हमारा सेंटर फॉर संस्कृत लर्निंग का केंद्र खुल सकते हैं, वहाँ पर भी वो समाज के लोगों के सुविधा के अनुसार। तो सभी लोग जैसे संस्कृत पढ़ सके, लिख सके, बातचीत कर सके संस्कृत भाषा में, इसलिए वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रयास कर रहा है, हम लोग भी इसको सहायता प्रदान कर रहे हैं, ऐसा ही।
1: अच्छा सर, देख रहे हैं कि जैसे पहले प्राकृत भाषा थी, तो प्राकृत भाषा के बाद इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसके बाद देख रहे हैं कि संस्कृत जो है वो आम भाषा नहीं बनकर रह गई, वो किताबों तक सीमित होकर रह गई है, तो जन जन तक इसकी पहुंच हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है?
3: हाँ, अभी तो ऐसा चल रहा है, ये यूनिवर्सिटी में ऐसा कोर्स हो रहा है, तो इसके भी प्रचार प्रसार करने के लिए हमारा वो पोस्टर बना हुआ है, एक नोटिस बना हुआ है, वो सभी डिपार्टमेंट में जाकर आसपास में जो कॉलेज है डिपार्टमेंट है वहाँ HOD जो है डिपार्टमेंट में, तो उन लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सब भेज देते हैं, और ये पोस्टर वहाँ नोटिस बोर्ड के, हर डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड में भी लगाते हैं, फिर समाज के जो लोग हैं उनको भी ये पोस्टर दिए जाते हैं, और ऐसे आकाशवाणी ऐसे प्रचार प्रसार जो माध्यम है मीडिया के थ्रू, ऐसे ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ संस्कृत का कोर्स चालू हो रहा है, अब सभी लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
1: बहुत अच्छी बात है सर कि आप मतलब इस पाठ्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद जो एक वर्ष का सत्र आपने बताया, तो इसके बाद उसका कैसे लाभ, क्या क्या लाभ ले सकते हैं, किस तरह से उसका मतलब लोग क्यों जुड़ें, ये भी तो सोचेंगे कि हमको क्या लाभ मिलेगा। छात्र जुड़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, सीखने की ललक होती है, तो उनको क्या लाभ मिलेगा इस पाठ्यक्रम के बाद?
3: पहले तो वो जो स्टूडेंट एनरोल करेंगे उनको एक भाषा के बारे में पता चल जाएगा, मतलब वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और अभी इंग्लिश जान रहा है, लेकिन संस्कृत ये कोर्स करने के बाद उसको उन लोगों को संस्कृत भी पता चल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा लैंग्वेज के बारे में पता चल जाएगा, और ये एक सर्टिफिकेट भी उन लोगों के सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट बहुत जगह में उनको बाद में नौकरी करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं, वो मतलब वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है लेकिन संस्कृत शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहा है, उनका तो ज्यादा नहीं, मतलब उन लोगों को तो ग्रेजुएशन में संस्कृत रखना पड़ेगा, मास्टर्स में रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह में उन लोगों को बेनिफिट हो सकता है। मतलब दो स्टूडेंट है एक इंटरव्यू में, तो मैं बोल रहा हूँ हमको इंग्लिश बंगाली और हिंदी लैंग्वेज पता है, और एक स्टूडेंट बोल रहा है मैं संस्कृत भी जानता हूँ, हिंदी बांग्ला इंग्लिश भी जानता हूँ, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऐसा हमारा जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सर है श्रीनिवास बरखेड़ी जी है, उन्होंने एक बार कहा था, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो बेलूर में था ग्रेजुएशन और मास्टर्स रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी, तो श्रीनिवास बरखेड़ी सर वहाँ पर एक बार गए थे, वक्तृता में एक बार बताया कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन ले रहे हैं जो छात्रों, तो उन लोगों को संस्कृत पता है तो उनको पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब ऐसा बहुत सारे जगह में उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकता है ये कोर्स करने के।
1: अभी जैसे हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी संस्कृत को बहुत, उसके जो ग्रामर है देखा जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज उसको कहा जा रहा है, तो ये मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी आप हमारे श्रोताओं तक पहुँचाए।
3: ऐसा ही है, वो जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपने कहा है वो कंप्यूटर के बारे में, संस्कृत ऐसा रिसर्च ने ऐसा कहते हैं कि कंप्यूटर को जो मतलब हम कंप्यूटर को सिखाते हैं हिंदी लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज, उससे पहले ही वो संस्कृत सीख जाते हैं कंप्यूटर। ऐसा है मतलब वो संस्कृत के भाषा इतना सुंदर है और साइंटिफिक है तो इसलिए कंप्यूटर सीख जाते हैं। ऐसा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, बांग्ला में कहे तो एक वाक्य बताता हूँ, राम विद्यालय जाच्छे, हिंदी में राम विद्यालय जा रहा है, ये अब एक एक वाक्य एक एक भाषा में आप देखे है, लेकिन संस्कृत में भी ये भाषा ये जो वाक्य मैंने बताया ये बहुत सारे मतलब एक ही वाक्य उसका जो क्रियापद है कर्ता कर्म है वो विभिन्न जगह में बैठा दिया तो एक ही अर्थ निकल कर आएगा संस्कृत। हाँ, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, ये संस्कृत में हम ऐसे कह सकते हैं, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः गच्छति विद्यालयं, विद्यालयं रामः गच्छति,
1: एक ही अर्थ।
3: हाँ, एक ही अर्थ है, विद्यालयं गच्छति रामः, गच्छति विद्यालयं रामः, गच्छति रामः विद्यालयं, ऐसा है जो अन्य भाषा में हमको नहीं पता है ऐसा होता है। हाँ, लेकिन संस्कृत में भी ऐसा है, जो इसलिए ही संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है, उनका जो व्याकरण है इसलिए वो कंप्यूटर भी
1: आसानी से
3: संस्कृत को सीख जाता है। ऐसा ही
1: तो संस्कृत को सर्वग्राह्य बनाने के लिए और जन जन की भाषा बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, लोगों में कैसे जागरूकता है सर?
3: ऐसा हम लोग सोच रहे हैं जो संस्कृत कोर्स को करेंगे उन लोगों को पहले ये तो लैंग्वेज वो सीख जाएंगे, और उसके बाद हम दैनिक जीवन में नियत संस्कृत का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, मतलब हम पूजा पाठ आदि कम करते हैं, और स्तोत्र गीता रामायण महाभारत पुराण पढ़ते हैं, और संस्कृत में पढ़ते हैं, लेकिन उस वहाँ क्या अर्थ है, क्या निगूढ़ अर्थ है, वो हम लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन

0: वो संस्कृत सीख जाने के बाद हम इतने दिनों तक जो स्तोत्र पढ़ा है, जो वेद पढ़ा है, गीता का अध्ययन किया है, तो वहां से क्या अर्थ आ रहा है संस्कृत सीख जाने के बाद ही हमको पता चल जाएगा। और अभी वो संस्कृत को सभी को संस्कृत के अभी जो जेनरेशन है, अगला जेनरेशन हम लोग सीखेंगे तो बाद में ही हम जेनरेशन को बता सकते हैं कि संस्कृत में ऐसा ऐसा है, हमारा जो वेद पुराण आदि सब ग्रंथ है ऐसा है, वहाँ ऐसा कहा है। हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम नेक्स्ट जेनरेशन को नहीं बता पाएगा, तो इसलिए पहले हम लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा
1: इसमें
0: संस्कृत।
1: इंटरेस्ट जगाना।
0: हाँ ऐसा ही है। और एक मैं कह चाहता हूँ, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो ये प्रयास है, ये बोल रहा है कि ये संस्कृत भाषा जनभाषा होना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में, यूसेट में सर्टिफिकेट कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए बताऊंगा, वो csucsl.samarth.edu.in इस लिंक पर जाइए और वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
1: तो मुझे लगता है सर कि ये बात हमारे श्रोता जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर अपने संस्कृति को समझना है, अपने देश को समझना है, अपने वेद और पुराणों को समझना है, तो मुझे संस्कृत सीखनी चाहिए ताकि हम कुछ बोल लें, कुछ पढ़ लें, और तभी हम जो है इन सब को समझ सकेंगे। और जब हम अपने संस्कृति को अगर समझ लेंगे तो हमारा देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर होगा। सुवीर कुमार सर और राजदीप घोष सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

संस्कृत को बनाए जनोपयोगी भाषा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुबीर कुमार और श्री राजदीप घोष से ली गई भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंटकर्ता थे परमेंद्र कुमार मिश्रा। और युवा दोस्तों, अब युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म छुपा रुस्तम का गीत, आवाजें अलका याग्निक, कुमार शानू और साथियों की।

कुमार शानू और अनु मलिक की आवाजों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है बाजीगर।

फिल्म बाजीगर के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के लिए अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: श्रोताओं, कुछ ही देर बाद हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड टी20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी बीज के एमएसपी में सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद कपास में 557 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने खरीफ सीजन में किसानों को लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुमान जताया है। वहीं मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग 7,50,00,000 टन कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज। इस राशि का उपयोग अस्पतालों में मरम्मत, पेयजल, बिजली, साफ सफाई, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था बेहतर करने में किया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल ने लोक भवन में कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर केवल 4 गाड़ियां रखने का निर्णय लिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह का आज रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि श्री सिंह का योगदान राजनीति के क्षेत्र में हमेशा यादगार रहेगा।
1: तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, दिल इंसान जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। इस वक्त उनके परिजन को इस मुक्ति घड़ी में सांत्वना देना चाहते हैं।
0: हमारे बोकारो संवाददाता ने बताया है कि गोमिया में पूर्व मंत्री माधवलाल सिंह के निधन पर शोक की लहर है। गुमला जिला भाजपा ने आज समाहरणालय के समक्ष बिजली और पेयजल संकट को लेकर आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, बिजली और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
2: सुविधाओं को लेकर गुमला में धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि राज्य में पानी, बिजली, विधि व्यवस्था सारी चीजें चौपट है। आम नागरिक त्राही माम कर रहे हैं। जिन योजनाओं के लिए पैसा खर्च की जा चुकी है लेकिन उसका पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल पर भारी घोटाला हुआ है। इन सारे चीजों की जांच भी होनी चाहिए और अभी जिला प्रशासन को राज्य से मिल करके आम आदमी तक राहत पहुँचाना चाहिए।
0: रांची नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर कार्यरत होने के बावजूद रांची नगर निगम में उनसे नक्शा पास कराने का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है। अदालत ने नगर आयुक्त को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा

0: समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में आज कोलकाता के थिएटर रोड में झारक्राफ्ट के नए एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उद्योग सचिव अरवा राजकमल भी उपस्थित रहे। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो उर्फ राजेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो गोलियां और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि आरोपी लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी समेत कई मामलों में वांछित था और पिछले एक दशक से प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के लिए सक्रिय था।
1: हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और पुलिस के द्वारा राजेश यादव पकड़ा गया। इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहां जहां इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में, फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड बरामद हुआ और इसके पास से हम लोग को रिकवरी हुई है एक उसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए।
0: इधर गिरिडीह में साइबर पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी बेंगाबाद थाना क्षेत्र से हुई है। इनके पास से करीब एक दर्जन मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे।
2: सूचना प्राप्त हुई है कि बसन बाड़ी और कोलरिया जंगल में कुछ साइबर अपराधी एक्टिवेट हैं और इनके द्वारा ठगी की जा रही है। डीएसपी साइबर के नेतृत्व में टीम बनाया गया था और 6 साइबर अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 13 सिम कार्ड और 5 बाइक ये भी बरामद किया गया। ये लोग कई तरह का गैस से रिलेटेड या ई चालान से रिलेटेड भेजते थे और ठगी करते थे।
0: साहिबगंज जिले में हर घर सुरक्षा अभियान के दूसरे चरण के तहत सभी प्रखंडों में ग्राम संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान ग्रामीण परिवारों और सखी मंडलों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीमा नवीनीकरण, क्लेम प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ कल रांची में झारखंड T20 लीग 2026 के आधिकारिक ट्रॉफी लॉन्च समारोह का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में झारखंड क्रिकेट के भविष्य और राज्य में विश्व स्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। समारोह में भारतीय क्रिकेटर और झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन विशेष रूप से शामिल होंगे। पेंटाथलॉन। सरायकेला खरसावां जिले के 3 खिलाड़ी 17 मई को धनबाद में होने वाली राज्य स्तरीय मॉडर्न पेंटाथलॉन चयन प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला संघ के सचिव सिकंदर महतो ने बताया कि शोभा महतो, रसिक चंद्र हसा और मिलन सोए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी मंजूर। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन योजना के तहत 5 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए मंजूर किए 25 करोड़ रुपए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोक भवन के कारकेड के वाहनों की संख्या घटाकर 4 कर दी है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी राजेश महतो को किया गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और रांची में कल होगा झारखंड T20 लीग 2026 ट्रॉफी लॉन्च समारोह, ईशान किशन होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले में आज
4: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गुमला संवाददाता।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल आयुष्मान भारत गुमला जिला के गरीब मरीजों के लिए न सिर्फ जीवनदायिनी साबित हो रहा है, बल्कि इस योजना के कारण गरीब व लाचार मरीजों के जमीन व जायदाद भी सुरक्षित हैं। इस योजना को लेकर गुमला सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज के परिजनों ने बताया कि
2: मेरा नाम दिलमोहन सिंह है, आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा इलाज हो रहा है और दवा चल रहा है, नहीं तो हमको जमीन बेचना पड़ता या कोई चीज को माल मौसी को बेचना पड़ता, इसलिए मेरा फ्री में सब दवाइयां और ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी को धन्यवाद।
3: मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है, मेरा लड़का का सुखदेव सिंह नाम है और गुमला अस्पताल में अच्छा से इलाज हो रहा है और मोदी जी का आयुष्मान दिया हुआ मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे खेत बेचना पड़ता, हर बैल बेचना पड़ता, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ।
4: मेरा नाम नारायण साहू है, मेरा भैया का इलाज करा रहे हैं भारत आयुष्मान कार्ड से, बढ़िया इलाज हो रहा है, हम लोग का खर्चा कम पड़ रहा है, हम लोग गरीब इंसान है तो हम लोग के पास पैसा नहीं था, इसलिए भारत आयुष्मान कार्ड से करा रहे हैं।
5: मेरा नाम सुभिता है, मेरा बच्चा है, वजन के चलते आयुष्मान के द्वारा मेरा चल रहा है और आयुष्मान नहीं रहते तो मेरा बच्चा को बहुत दिक्कत होता, मेरा बच्चा आयुष्मान के चलते ही अच्छा है और कार्ड नहीं रहता तो समस्या था ये कि हम लोग का अस्पताल में भर्ती नहीं होता और कार्ड के चलते ही हो रहा है अच्छा से देखभाल, बाहर नहीं जा सकते।
1: गुमला जिला में आयुष्मान भारत के तहत लाभ ले रहे मरीजों एवं जिले के लक्ष्य को लेकर डॉक्टर मोनिका ने बताया कि
6: ये तो ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें टर्शरी जो ट्रीटमेंट होता है, सेकेंडरी या टर्शरी ट्रीटमेंट, उसका हम लोग लाभुकों को बेनिफिट देते हैं। यहाँ जनरली पीएमजे के उस 5 लाख तक का कवरेज मिलता है और ये कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। हमारे जिला का टारगेट जो था उसके हिसाब से अभी हम लोग 69% कवरेज कर चुके हैं, दैट इज हम लोगों ने 69% लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। हमारे स्टेट में राशन कार्ड धारी होते हैं उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बना के देते हैं, अंडर पीएमजे 5 लाख रुपए तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका ना केवल एडमिशन के समय जो होता है और उसके बाद एडमिशन के दौरान टेस्टिंग या फिर दवाई जो लेते हैं वो उनको फ्री में मिलता है। गुमला जिला में तो जैसे एवरेज हम लोग महीने में सदर में ही केवल 500 जैसा लाभुक रहते हैं और बाकी सीएचसी वगैरह में भी ऑन एन एवरेज 100 जैसा लाभुक हर सीएचसी में पर महीने आ जाते हैं, बट गवर्नमेंट सिस्टम में तो जो उनको दवाई वगैरह बाकी सब इलाज उनको फ्री ही रहता है। इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट है जो रांची जाके इसका लाभ उठाते हैं। ये प्रोग्राम भी इसलिए बना था जो लाभुकों को ऐसा ना लगे कि उनके पैसे के अभाव में वो अच्छी इलाज या अच्छा दवाई नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते तो इसका एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से वो फ्री का इलाज और फ्री की दवाइयां ले सकते हैं।
1: बहरहाल केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण आयुष्मान भारत योजना गुमला जिला के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
0: अभी आप सुन रहे थे गुमला जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है बादल।

जानकार कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं उदित नारायण और जसविंदर नरूला की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें।

उदित नारायण और जसपिंदर नरूला की आवाजों में फिल्म आ अब लौट चलें के इस गीत के साथ ही आज का झनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह। कानूनी सलाह कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं, ई कोर्ट सेवाएं न्याय तक आसान पहुंच विषय पर श्री सौरभ कुणाल की वार्ता का पुनर्प्रसारण।

ई कोर्ट सेवाएं न्याय तक आसान पहुंच। न्यायस्य मूलम सुस्थिति, अर्थात न्याय की नींव व्यवस्था पर टिकी होती है। जब न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है तभी समाज में शांति और संतुलन बना रहता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ, लंबित मामलों की अधिक संख्या और पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण न्याय प्राप्त करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में डिजिटल तकनीक ने ई कोर्ट सेवाओं के रूप में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुगम और त्वरित बन रही है। आज मैं ई कोर्ट सेवाओं पर चर्चा करूंगा कि यह क्या है, कैसे काम करती है और अन्य देशों की तुलना में भारत की न्याय प्रणाली को इसमें क्या लाभ मिल रहा है। ई कोर्ट सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनका उद्देश्य न्यायालय की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन और पेपरलेस बनाना है। यह सेवाएं ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लागू की गई हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। इसके माध्यम से नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जैसे मामलों की ऑनलाइन स्थिति देखना, न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों की ऑनलाइन उपलब्धता, मुद्दत यानी हियरिंग डेट की जानकारी प्रदान करना, ई फाइलिंग और ऑनलाइन दस्तावेज प्रबंधन, और पांचवा डिजिटल भुगतान प्रणाली। यह सारी सुविधाएं ई कोर्ट मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से यह आम जनता और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध है। अब इसकी आवश्यकता की बात करें तो हमारी न्याय प्रणाली में भी सुधार के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इसका कारण है भारत में 4 करोड़ से भी अधिक मामलों का लंबित होना, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच कठिन है, तथा इसके साथ ही देखा जाए तो कागजी कार्यवाही धीमी और महंगी होती जा रही है। अब बात आती है कि ई कोर्ट कैसे समाधान प्रदान करता है। तो ऑनलाइन केस स्टेटस देखने से नागरिकों को बार बार कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होती और ये एक बहुत ही बड़ा सहूलियत उन्हें प्रदान करता है। अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन आसान होता जा रहा है। ई फाइलिंग से समय और पैसे की बचत भी होती है और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली से कोर्ट फीस जमा करना सरल सा होता जाता है। भारत ई कोर्ट सेवाओं को अपनाने में तेजी दिखा रहा है, लेकिन कई विकसित देशों में यह प्रणाली पहले से सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है, जैसे एस्टोनिया। यहां पूरी न्यायिक प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होती है, मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाया जाता है। एक और देश का यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो है सिंगापुर। ई लिटिगेशन पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ही कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं। साथ ही यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें मामलों का निपटारा तेजी से होता है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ई कोर्ट और ई डिस्कवरी प्रणाली के कारण वकील और नागरिक डिजिटल माध्यम से सभी कानूनी दस्तावेज आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे होने वाले लाभ की। तो ना त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम। मैं ना तो राज्य चाहता हूं, ना स्वर्ग और ना ही पुनर्जन्म। मैं केवल पीड़ित लोगों के दुखों का नाश करना चाहता हूं। यह श्लोक न्यायपालिका की भावना को दर्शाता है। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य न्याय की पहुंच को सरल बनाना है और ई कोर्ट सेवाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि ई कोर्ट सेवाएं लाभदायक हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों की तकनीक

तकनीकी का ज्ञान ना होना, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है, जिसका समाधान ई कोर्ट कियोस्क और लोक अदालतों में डिजिटल सहायता केंद्र, जिसका समाधान अधिक जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी अक्सर देखी जाती है, जिसका समाधान ई कोर्ट कियोस्क और लोक अदालतों में डिजिटल सहायता केंद्र का खुलना हो सकता है, जो अब धीरे धीरे हमारे कोर्ट के प्रचलन में देखा जा रहा है। तीसरा, साइबर सुरक्षा। संवेदनशील कानूनी दस्तावेजों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। समाधान उसका उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना है, और इनके तहत हम इन सारी चुनौतियों का अच्छे से सामना कर आने वाले निकट भविष्य में आम जनता को ई कोर्ट सेवा के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं। ई कोर्ट सेवाएं न्याय तक पहुंच को सरल बना रही हैं और न्यायिक प्रणाली को डिजिटल युग में प्रवेश करा रही हैं। अगर भारत इस दिशा में निरंतर कार्य करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर नागरिक को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। ई कोर्ट सेवाओं को सफल बनाने के लिए भारत सरकार, न्यायपालिका और बार काउंसिल की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है। सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत ई कोर्ट प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए विशेष प्रशिक्षण यानी डिजिटल कोर्ट प्रक्रियाओं की प्रभावी बनाने के लिए अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के लिए ई कोर्ट तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो अब बहुत हद तक सफल होता दिख रहा है। अभी हाल में ही हजारीबाग न्यायालय में 50-50 की श्रृंखलाओं में कई अधिवक्ताओं को ई कोर्ट सेवा की गहन जानकारी दी गई, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया गया। इस क्रांतिकारी पहल को सफल बनाने में हमारे हजारीबाग सिविल कोर्ट के न्यायाधीशों, अधिकारियों और अधिवक्ताओं का योगदान सराहनीय रहा। इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हजारीबाग सिविल कोर्ट के हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश श्री रंजीत कुमार हैं, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व में यह पहल आगे बढ़ी। साथ ही हजारीबाग सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार श्री दिव्यम चौधरी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA के सचिव श्री गौरव खुराना का भी आभार है, जिन्होंने इस परियोजना को प्रभावी रूप से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा ई सेवा के माध्यम से न्याय को सरल और सकल बनाने की ओर कटिबद्ध है। इसके साथ ही अधिवक्ता गौरव सहाय और अधिवक्ता दीपक गुप्ता जी ने अपने प्रशिक्षण में अपने ज्ञान और अनुभव से ई सेवा को समझाने में तथा डिजिटल न्याय प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। अब आगे बात करें भारत में ई कोर्ट सेवाओं के भविष्य की, तो यहाँ पर बता दूं कि ई कोर्ट सेवाएं न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी भी इनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। भारत सरकार और न्यायपालिका लगातार इन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रही हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का उपयोग। भविष्य में AI आधारित चैटबॉट और वर्चुअल लीगल असिस्टेंट नागरिकों को मामलों की स्थिति और कानूनी परामर्श देने में मदद कर सकते नजर आएंगे। जजों के लिए AI आधारित केस विश्लेषण से मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा डेटा सुरक्षा। ब्लॉकचेन यानी जो कि 2008 में हमारे बिटकॉइन से संबंधित यह डाटा, इनक्रिप्टेड डाटा को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल में आया था। कोर्ट के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, जिसे डेटा में किसी भी प्रकार की हेरफेर नहीं हो सकेगी। हर जिले में और तहसील स्तर पर ई कोर्ट कियोस्क स्थापित किए जाएं, जहां लोग अपने मामलों की जानकारी ले सकें और ऑनलाइन आवेदन कर सकें, जो कि अब धीरे धीरे जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है। विद्या अमृतम श्रुति अर्थात शिक्षा से ही अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह न्यायिक साक्षरता से ही नागरिक अपने अधिकारों को भली भांति समझ सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा बार काउंसिल और लॉ कॉलेजों के वकीलों और कानून के छात्रों को डिजिटल न्याय प्रक्रिया का प्रशिक्षण मिलना शुरू हो चुका है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें,

ई कोर्ट सेवाएं न्याय तक आसान पहुंच। अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता सौरभ कुणाल से ली गई वार्ता का पुनर्प्रसारण। और इस वार्ता के साथ ही आज का कानूनी सलाह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है।

सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दो रास्ते के इस गीत के साथ ही आज का ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। रात के 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। होलंग मोड़ से सुधा, सुधांशु, अंशु, भैरव, गौरी, छोटू विश्वकर्मा, पूजा, पवन पिंड

बिट्टू, गुड़िया और इनके बहुत सारे मित्र लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, चेपाकला बड़का गांव हजारीबाग के बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, प्रभात ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका, इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म लव स्टोरी का ये गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। और अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के पसंद का गीत ग्राम दलाई केला पदमपुर सरायकेला खरसावा से लक्ष्मण सोए गीता सोए सरिता सोए सिनी मॉय सोए। मटवारी हजारीबाग से रानी मणि करणिका उज्ज्वला प्रभा सिंह ऐश्वर्या प्रभा सिंह पृथ्वीराज सिंह और गोल्डन सिंह। सरदार रोड जैन मंदिर के पास से मोहम्मद फरजंद अली मोहम्मद मुमताज गुलाम मुस्तफा गुलाम मुर्तजा राजेंद्र ठाकुर और अजीत ठाकुर। और मटवारी गांधी मैदान के पास हजारीबाग से आप हैं राजदेव प्रसाद। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म जीवन मृत्यु का गीत।

बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म आगाज का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने गोलपार रामगढ़ से शहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अनवर हुसैन, तलत यास्मीन, रफत यास्मीन, फरहत यास्मीन, अशरफ हुसैन और बिस्मिल्ला खान, झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, बरकाकाना से अफजाल ताज शाहीन, सुल्ताना सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, और मानगढ़ से आप हैं मिथिलेश पांडे, बबीता देवी, नीतू कुमारी, अंशु पांडे, सुधांशु पांडे, अभिषेक पांडे और परिवार के सदस्य।

और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनने की फरमाइश की है आप सब श्रोताओं ने। नया टोला भीकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा।

और गरिमा शर्मा, ग्राम पोचरा से महेश राम, सरिता देवी, पिंटू, वर्षा, फूलवासी देवी और परिवार के सदस्य, धरचांची जमुआ गिरिडीह से श्यामेंद्र श्याम, संजीव कुमार, अंजीव कुमार, रंजीव कुमार और सुरुचि कुमारी, और झुमरी तिलिया से विजय शर्मा, भोला चौधरी और सुधीर कुमार।

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। लाखे शरीफ हजारीबाग से मोहम्मद गुलाम हसन, मोहम्मद गुलाम सरवर और इनके बहुत सारे मित्र। बड़ा बाजार ग्वालटोली हजारीबाग से प्रवीण कुमार, नैन्सी रानी और प्रतिभा रानी। भादोडी झुमरी तिले से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शम्मी, अपराजिता और परिवार के सदस्य। रेलवे स्टेशन रोड हजारीबाग से शमीम अहमद, निकत परवीन, खलील अहमद, आरजू परवीन, नसीम अहमद, शहरबानो, नूर इस्लाम चांद, हसीना खातून और शहरयार। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म डर का गीत।

आपकी चाहत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आराधना का गीत। फरमाइश आप सब श्रोताओं की बरकाकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी कोको चारू और आर के वर्मा। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा। खीरगांव माली टोला हजारीबाग से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदर्श मालाकार और अरविंद मालाकार।

और फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म आपकी कसम का गीत। फरमाइश आप सब श्रोताओं की रातू रोड रांची से सच्चिदानंद दुबे नटवर निर्मोही कुमार दिवाकर सत्यम सांवरिया टाटीझरिया से उज्जवल कुमार सिंह मैसूर सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम अमन अकरम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा बच्चू शेख और चीना शेख जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन तबारक हुसैन अमानत हुसैन शराफत हुसैन बिल्किस फातिमा गनीज फातिमा और शहनाज फातिमा पत्रातु हजारीबाग से बेसिल खलको सेसिल खलको मधु रितु रचना मीतू श्वेता पल्लवी रोहित परवीन सचिन नदीम ललिता और परिवार के सदस्य।

फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ ही आज का आपकी चाहत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचार संध्या, न्यूज @9 और स्पॉटलाइट के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से

से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी

0: वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटिक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटिक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटिक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
1: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2 lakh 60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
9: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
10: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore rupees. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन.
9: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन.
8: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
9: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व से.
10: इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व. बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स. दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. एन आउटले ऑफ 37,500 crore rupees हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 lakh crore rupees. And projects will be set up to gasify 75 million tons of coal.
9: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
8: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi high speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi high speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Baba Saheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET-UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram and one from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group, Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. He also encouraged people to use public transport. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. She has urged Delhi residents to adopt carpooling and make greater use of buses and metro services instead of private vehicles. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport, buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Amid the ongoing conflict in West Asia, the Prime Minister on Sunday urged people to reduce petrol and diesel consumption and use public transport to conserve foreign exchange. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.uv.in and download News on AIR app. Welcome back. You are with us on the news at 9. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier, restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt that huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers on lifting of the restriction. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Today, Chief Minister Shubhendu Adhikari alleged that the former TMC government had not taken any step in these cases to safeguard corrupt officers. He informed the media that the current government of West Bengal would adopt zero tolerance to institutional corruption. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. Chief Minister Sarma said a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He added that the UCC bill will be tabled on the concluding day of the session.
6: Today, Assam Cabinet should pass Uniform Civil Code. We customize that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of Uniform Civil Code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of Uniform Civil Code. The UCC bill will be laid before the Assembly on 26th of May.
8: Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West in the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
11: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Maldivian counterpart Irutisha Madam in New Delhi today on her first official visit to India. In a social media post, Dr. Jaishankar said during their meeting they underlined the neighbourhood first policy and reviewed bilateral cooperation.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात एक ऐसी आवाज की जो अंधेरे में एक रोशनी जगाती है, जो हमें सहलाती दुलारती ही नहीं बल्कि हमारे दिल की धड़कने भी बढ़ाती है। वो आवाज जो हमें जोश भरती है, हमें थिरकने और झूमने पर मजबूर करती है। आज बात इस स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल की।

आदत से मजबूर। बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं।

वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कॉम्पिटिशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था।

बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं। पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना।

15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं।

पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई।

अबू धाबी से भारत आकर बिनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बिनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बिनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं।

आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मार कर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने बीपीओ में एचआर की नौकरी कर ली।

इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार ए आर रहमान का।

दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन ए आर रहमान के पास नहीं गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो ए आर रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। ए आर रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था।

रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी ए आर रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया।

गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे, यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते।

बेनीदयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनीदयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज़ सीधे दिलों को छूती है।

बेनी दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उनके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं।

बीनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं।

बेनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचा कर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसके गवाह तो हम सभी हैं।

भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो A.R. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं।

बिनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बिनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं।

2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपने जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं, देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाहे

बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म चांदनी का गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखों से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म आदमी का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म अभिमान का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सन 1967 में रिलीज हुई शक्ति सावंत निर्देशित फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के कुछ गाने। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण और केन सिंह ने। इस फिल्म के गीतों को संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस का गीत।

दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का।

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो।

एक फिल्म से कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के कुछ गाने। अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग। और अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और गीत मोहम्मद रफी की ही आवाज में।

होगा तुमसे कल भी सामना, कल तो जानोगे दिल वाला नाजीज है कोई, तब तो मानोगे होगा तुमसे कल भी सामना।

God. मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के इस गीत के साथ ही आज का एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, कि कृपया कुछ पल करें इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किये। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurugram, and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry into the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71 for 1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। इसके साथ ही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।